सच्चाई सब समाय पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदै सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है।

गुरमुख सलाते आये अंदर हर प्रीति, जिनको पोते पुन है तिन वापस पीति, नानक नाम से आये सच सिफत सनाई। श्लोक महला पहला सती पाप।

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब द्रवे, सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औहठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध

हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम सचाता। बाहर मूल न खोजिए करमाए विदाता। मन मुख हर मंदिर की सा

0: कडवही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आए तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नान का ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किच हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान दे इंद्र रोआया परशुराम रोवे कर आया अजय सो रोवे पीछिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए।

कोई पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलनी गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

कोय, जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने, नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा। सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्मो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए। पौड़ी काया अंदर गर कोट है सब दिसंतर देसा, आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा, आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा, गुर सेवा ते जाने सच प्रतिये सा, सब किस सच्चो सा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है

चित करे नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस आए पौड़ी आपे आप।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत, मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजो।

मन तन हुए निहाल बिंदक नगर चास नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो तो

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

जिसने मस्तक पाद तुर लिखिया सो सिख गुरु कह आवे आप तरे आप तंग सब तारे सबा सृष्ट छावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह नित पर।

बहुतारोहा व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा मन लागा तुस्मोहा ठग ऐसे ठग रल आया साथ दे इको जेहा सतगुर सराफ।

सा पौड़ी, जिस कै मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

जीव दै दे गुना सत पैन प्राव है पारंगत दान परीव दै नानक राज चलाया सच कोट सखानी नीव दै लैने करे उन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दै।

मुद्रा मदद सहज तुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीरथ बरत नेम सुख संजम रव सस गहने दियो रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत यो महारस पियो रे निजर धार चुए अत निर्मल ए रस मनु आरा तोरे कहे कबीर सब

सेवक अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे बिन दागे पग जा

जी मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण विसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम ना बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन इक बिरवा उपजिया, करती जल हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा।

रहे निरालम तारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बारी। कवन काज सीजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवन इद तरन तारन चिंता, मन इक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा।

भगत बचल पहारी कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाहे बैकुंठ नहीं संसार निरपो कह कर बजावे तूर अनहद बजे सदा परपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कटना है रहाओ जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे

मंदर सोवे पटंबर तान, सेज सुखाली बिगसै जियो, सो सिमरन तू अंगन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझको है नमाए। सिमर सिमर हर हर मन गाये, यो सिमरन सतगुर ते पाये। सदा सदा सिमर दिन रात।

बंदच बंधन पाया मुक्तै गुर अनल बुझाया। जब नप सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना। पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ।

गिरासा जब कुंभक पर पुरलीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया सुनते सुन मन बसाया।

अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख। दुनिया हुशियार बेदार, जागत मुसीहत हौं रे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार। नालियेर फल सेबर पाका, मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

आकाश मधे परमी अले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले राव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये

पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सताओगो।

आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवे परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया। कल्प की जय अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजै। अफबान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजै मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय जसरथ राय नंद राजा मेरा। रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमृत पी।

हम सब सुनिए अनपौ पाओ ना दर्श है। लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारसे ना परसे। देव संशय गांठ ना छूटे काम क्रोध माया मा।

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने सब पर हर पास धरे। राव हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए खरे, किल बिखे दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में एक किन पल दूर करे। वडपागी हर नाम त्यावे, हर के भगत हरे, इनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राखो लाज हरे। नक्त महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले, राम नाम जप्यो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले। रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन, जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। पुरुषोत्तम हर नाम जन गायो, सब दालग दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस तमले। उनवे कन कन कन हर गर्जे, मन बिरसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो आनंद भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सके, गुर प्रसादी हर नाम दियायो, हम सतगुर चरण पखे। रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर, हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख पंजन, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊंच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सके। जो चंदन संग बसे निम

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को नाम।

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत परेशान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वद ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम

युग उस्तत तारो। हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निध हर मान सरोवर, जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे।

हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसी थी हम हर देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन अनदो अनद भये।

फिर माता पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु पय नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल न विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिबसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर तांका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर रहे कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हर पज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होए पुनीत, नानक दास बल बल कीत नट।

हरे रहाओ, हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आ गए, मैं साधु चरण पखारे, सहस नेत्र नेत्र है प्रभु को, प्रभु एको पुरख निरारे, सहस मूरत एको प्रभु ठाकुर, प्रभु एको गुरमत तारे, गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उर्धारे, हर हर कथा बनी अति मीठी, जो गूंगा गटक समारे, रसना साध चखे पाए दूजे, हथी के लोग विकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अंग साध दिसारे, गुरमत राम नाम तन

क्या बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जमा।

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनो मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधिकाई परसुआ गणक उधारे परस न परस पै कुब जाको ले बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम शंकर मार बिदारे मानुख

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी कब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अपनी के मन श्रद्धा कर हर तारे। मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे। बन बन टूट

सकते हैं सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खेवारे, जो जन चंद्र हांस दुखिया, त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे, प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे, प्रभु जन के सांस निहारे, कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे, आपन आप प्रभु ठाकुर, प्रभु आपे सृष्ट सवारे, जन नानक आपे आप सब वरते, कर कृपा आप निस्तारे, नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे।

किनारे मिल सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखा।

विचारे निज पर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंदर हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाहीं पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रभु आया। शरणांगति प्रभु पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तरा।

आया हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुख दाता सत्संगत मिल हर साधे आया गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया गुरु मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो।

मेरे मन हर पज सब किलविक काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पूख तिखाट। छक्का पहला माली गौड़ा में।

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिरमार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को न मिटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार, जास जपत होवत उधार रहाओ। जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुच्चत।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंचो मूचो बहु अपार, सिमरत नानक पर।

नैन दर्श पे खोन स्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिगसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा के कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा धर्म जा के दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ता को जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। एक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड लेहो पौजल बिखम ते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांध भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा।

तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेख उबारी अले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे। प्रणवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू मैला पहला कर पहला।

नानक शरण तुहारी आ, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है, खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

माए सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाए विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल साहिब सो सालाही है जिन कर देख्या खेल संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते पोग विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गवाई।

कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरन।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंक हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होए जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जा।

हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण काए तो देवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको अवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना इहो तन जले ना

परमगत पाए। पंत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले तायो तन पाए। मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है।

मार ले प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जै मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीज है पणत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जै मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीज है मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे पे खारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ता कै मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती, गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती, जा तो पीतर महल बुलावे, पूछो बात निरंती रहाओ, ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी, हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण, त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा, तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर, वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े, सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती, शब्द वसाए परम चुकाए, सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुरु बचनी बाहर

प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए इहो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर व्यापिया जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियो नु गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार ना जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु ना जाए जिस नाल जोर ना चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा सालाही है तिस जेवर अवर न कोए मेरे मन अंदिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू अंदिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु दे बुझा

गुरमुख पार पया रहाओ, सुर नर गंग अंदर बे जप्यो, रिख बपुरे हर गाया, शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो, मुख हर हर नाम जप्या, हर हर नाम जिना मन पीना, ते गुरमुख पार पया, कोट कोट ते तीस्त्यायो, हर जपत्या अंत न पाया, वेद पुराण सिमरत हर जप्या, मुख पंडत हर गाया, नाम रसाल जिना मन वस्या, ते गुरमुख पार पया, अनत तरंगी नाम जिन जपया, मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए, जो हर प्रभ मन पाया, गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो, जन नानक नाम लया।

मेरे सतगुरा में हर हर नाम दृढ़ाए, मेरा मात पिता सुतबंद को मैं हर बिन अवर नमाए रहाओ, मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए, तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए, सतगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए, जिन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीन मर जाए, ओए फिर जोन पवाई है मर जम्मे आवे जाए, ओए जम दर बदे मारिये हर दरगे मिले सजाए, तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लेओ हर राय, हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए, हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेलाए, मारू मेला चौथा हौ पूंजी नाम दसाईदा को दसे हर तन रास, हौ तिस विटो खन खनिए मैं मेले हर प्रभ पास, मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास, मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम तन रास, गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर तीरक हर साबास राव, हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास, बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास, हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास, सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास, सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास, मन मुख पाग विहूनिया तिख मोया कंदी पास, गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास, चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस, गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास, मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी, जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी, गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम समाणी, मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी, हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ, मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी, संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी, मेरे मन तन नाम आधार

हम जाचक दीन प्रभ तेरिया मुख दीजै अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जीओ रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जीओ। नवे छिद्र स्रवे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जीओ। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जीओ। तू सर्वत्र तेरा

पहला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विकाटे हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलदियां नाल सखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापे जप हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस पावे जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निर्भव निरंकार सतनाम जग में श्रेष्ठ उत्तम काम दुश्मन दूत जम काल ठे मारो हर सेवक नेर ना जाई जियो जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो हौं अंदिन नाम लई करता रे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद डर पे तरत आकाश नखत्रा सिर ऊपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा एका निरपव बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पे सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पे केते रूप उपाया छल बपरी ए कौला डर पे अत डर पे धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे इनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे विदरदासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराद बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रमेयो बहु पांते अनेक जतन करता।

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

हूँ कौ दौरे हो आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घरक नहीं जाने हो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई निरपो पे सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभ को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुलारयो। हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो। मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो। लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहाओ। असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो। प्रभ बिसरत महा दुख पायो इहो नानक तत विचारे हो। मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत। तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो। संतन की ओट आपे आप रहाओ जा के वस है सगल संसार। आपे आप निरंकार नानक गयो।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारियो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इआनथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हों हों करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर माने।

सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ विकार पाथर गले बांधे। निंद पोट सिराए महासागर समुंद लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन बिद पार पराए त्याए हर जियो होए।

आया था। अनुभव अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तैं अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट न कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो प्रगास।

मैला पंजवा वेद पुकारे मुख ते पंडित का मामन का माठा मोनी होए बैठा एकांति हृदय कल्पन गाठा होए उदासी गृह तज चलियो छुट कहना ही नाठा जी की कहते हैं बात कहां आप मुक्त मोको प्रभु।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

दोयनिया जी जंग सगले पतलिया रहाओ एक कै श्रम कर गादी गढ़ है एक कै सुकने दाम ना खड़ है राज कमाए करी जिन फैली ता कै संग ना

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसे गीता के, साध संग पै जन्म के, गत पाई नानक नगर नह लिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते देखा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब तकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जी।

नानक ता कै बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक किरत ना जाए मिटायो। पस पंखी पूत अर त्रेता, बहुविध जोनी।

सारा अनेक दुख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाई। प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात न बंद न मीत न जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी। प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया दीना नाथ।

प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह का

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम त्याई नानक दीन नाम मांगे जितिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अप

अवर न कोई जीवन प्रतपाल समा है होसी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतित उधारन तारन बल बल बले बल जाये ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

अतल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा त्रिपत अघाए संता, गुर जाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तेखत सगल त्यानो तजो मन ते अभिमानो। नेचल तिन का ठाणा गुर ते मैल पछाणा, आम दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे। पूरन तृप्त अघाए सह समाज सुभाए, हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया। मारू मैला पंजवा कर छीवा दो पदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियान पा मिल साद त्याग गुमान, और सब किस मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम, मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम। राव दुख दीन ना पाओ ब्यापे मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान। मारू मैला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने। मेरे मन नाम नित नित लेहे, जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे। राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे। मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत, मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे सीध, नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू मैला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत, गुर मंत्र हृदय चितार। चरण शरण पद संग साधु, पव सागर उतरे पार। मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर्षो, अवर सगल विसार। रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू आपन आप निवार। गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबहु न हार। मारू मैला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो, तिसे प्राप्त नाम ते।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीक साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खसम छड़ाए लया। विचों गर्भे निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया, आवे जाए पवाई जोनी, रहन न कितनी थाए।

तुमरो प्रदान है। कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जा का काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो, गन काहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में दाम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निदगायो, ताको पयो सहाई, कहो नानक में यही प्रोस है, गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत नाहिं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अच्छा।

असर तीरथ बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपुर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलो है जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मथी है अमृत पाए नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हों मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै सबदे जे मरे फिर मरे न दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसे सब कुल उदाहरण हार सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा दूजे पाए कार कमावनी नित तो ताफे सारा साची संगत थान साचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ साचे सच नाम अधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोय था ला दिया दिया समुद्र मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केव तू जल सागर सराल बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोय था सबद लंगावन हार सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सो लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोस गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने नाव संतोख मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जम्मन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहत पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उड़े ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मतहीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपुर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाय जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आ गए पाछे

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप। जो तिस पावे सोची है तू दीपक तू धूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे साचो चवे छूटे सोग विजोग, नानक नाम ना विसरे जो तिस पावे सो होग। मारू मैला पैला साची कार कमावनी होर लालच बाद, इह मन साचे मोहया जीवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। हम दिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है। ताने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की, साची सुरत सुहावनी मनमुख मत पी की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ तुर की, साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या। चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या, साचे कर साचे रखे गुरबचन सुवाख्या। मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी, साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद बिगाड़ी। गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी, अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी। बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तरकारी। जिन्नी नाम विसारिया तिन्ना ठोर न ठाओ, लाले लालच त्यागिया पाया हर नाओ। तू बख्शे ता मेल ले नानक बल जाओ। मारू मैला पैला लाले गर्व छोड़िया गुर के पैसे दुभाई, लाले खत्म पछाणिया वड्डी वड्याई। खत्म मिले सुख पाया कीमत कह न जाए, लाला गोला खत्म का खत्म वड्याई। गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहा, लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई। लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई, आपे मीरा बक्सले वड्डी वड्याई। आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई, तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तुलाई। बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई, सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले सलाया। जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विक पाया, जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया। लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आत गवाए, बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए। सब में नाम निदान है गुरमुख को पाए, लाले विच गुण किस नहीं लाला अवगणियार। तुझ जेवर दाता को नहीं तू बख्शनहार, तेरा हुक्म लाला मन्ने ते करनी सार। गुर सागर अमृत सर।

गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए। सोइना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई। मारू मैला पैला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे की रह। तेहो मन अवगुण बांधया सहो दे शरीर है। पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है। क्यों रही है उच्चलना बुद्ध शब्द विचारा, जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहाओ। जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ, जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ, कीता क्या सालाईए कर देखे सोई। जिनकी आसो मनोसै मैं अवर न कोई, सो साचा सालाईए साची पत होई। पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला, पाप पुन दे संग में खुदिया।

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर ताकिए पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेटी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़न से आमूठी विन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज विदूचै अवरा के कर हेरै गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटै दुर्मत तू मन के रै दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साथ कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे।

आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिकती रहे माया का देवाना किस न मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना आप कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर सबदना चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ताजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमती खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी।

पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरियो पार अपार करे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास समार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे। तरन पलाव करे नहीं पावे किस उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूण कुटंब क्यों प्रीत करे। खावे पोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे दिन गुड़ सब दिन आप पछाने दिन हर नाम ना काल करे। जे कामो हूं मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे। सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख न मिटी जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुर बाद जीवन होर मरना दिन गुर सबदे जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस पोगन फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

अड़े दोहागनी सावरणे क्यों जाओ मैं गल औगण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेयड़े फिर समला सावरणे करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए फिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए

परजाइयां ना से ससुड़ियां, सच्चा साथ ना टूटे गुर मेले सहिया। बलिहारी गुरे अपने सद बलिहारे जाओ, गुर बिन एता पव सकी, गुर तिर मेलम दित्तम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासिया देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ।

तो सौ रंग रवंत सबे रुत्ती चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुच्ची निस देहो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

एक जोत दो नाओ। मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाई है बिन सतगुर पल्ले ना पाए। सतगुर कह पाने मन

जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विच्चों दुर्म

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंद कमावे वेखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी।

कार्तिजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर

ना कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की।

चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत, ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत, कर परगास पर चंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद, शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान, जहां सा किछ तां लागयो तिल ना शंका मान, सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए, चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल, मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुरते मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई अवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रखपत परमेश्वर फिर नांगे नहीं जीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुर न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रहे अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए, जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने कट कट राम हे आलिए, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचय तो पौ मन माही, किस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए, जो सूरा तिस ही होय मरना जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए, जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजनहार है लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा माल जोबन तन चोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे,
जिनकी ताक से ना जानी अंधा ता दुख सह प्राणिया खालक था वो पुल्ला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया मौला खेल कर...

साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाय पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवला।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनक आपे सर्वाणा, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेल खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है गुरते।

पर मने क्यों लूजै, जो तुझ सेवै से तुझ ही जे हे, निरपव बाल सिखाई हे, आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई हे, वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता सुत

कोई न काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सबना सिर पाए मिले पौ जाए है। फूले चूके मार्ग पावे आप पुलाए तू है समझावे। बिन नावे मैं अवर न दिसे नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा काशी कांती पुरी द्वारा। गंगा सागर बेणी संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी आपे राजन पंचाकारी। तख्त बह अगली प्रभ आपे परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई सबसे दाता तिल ना तमाई। परपुर तार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगम अपार साचे सिर जनहार मुरार। जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार उबे सेवे अलख अपार।

तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया, सच्चे ऊपर

नाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वर्ते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परखे साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुरपूरा गुर का शब्द मने सोसूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वर्ते साचा सोई मनमुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे न दरगे सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सोजी बूझ न काई है। दया दुआ पर अद्दी होई गुरमुख विरला चीने कोई दोए पग धर्म तरे तरणी तर गुरमुख साच ते

कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कहे प्रभ जाचे, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमे

लिव गुरमत जाती, मन मुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है। भोजन साच मिले

तरफ न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यो बणत बनाई है, सब की गत मित कोय न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किस करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाच कमावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता। आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे। तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ही बड़ाई है। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पर आई है। कोई जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे। कलमल मैल नाही ते निर्मल, कोई रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, इह जो बन साथ है देह पुराणी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूर कबाड़ा, कूर मारे काल उछाड़ा। साकत कूर पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पर आई, पर पड़ दज्जे सांत नाई। मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हौं मैं तंद छोड़ो लंपटाई। सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला। पड़ पड़ अगन सागर देले।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करनंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाई है, मर जन्मे आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तख्त सो शब्द विचारे, तत् लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबार है, ताड़ी लाई अपर अपार है, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यो तिस पाणा तिवे चलाए, तिसे सरीत न दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रकत मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्ध त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए, विणना में गत गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासे, मुठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन सीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े करवा

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आंख न चले सच खरा सचियारा है साच बिना दर्श जय न कोई साच शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहुत सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किनेही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगह मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजै, पौन पानी बैसंतर गाजै, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जल से बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआरा।

कनेरे नरक पथे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अग्न बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कल्लर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुरु तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पर पड़ पाही अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है सत गुरु तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुरु राखण हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतारा।

सातत माया को बहु पावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कई है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे।

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। हच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो। अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सत गुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत मिल काया कीनी, किस में राम रतन लैचीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनस निंदा करे अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके। बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। हो मैं ममता करदा आया, आशा मनसा बंद चलाया। मेरी मेरी कर्त क्या ले चाले, बिखला दे चार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती। नानक राम नाम।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल रचाया, पवने पानी अग्नि जियो पाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवां गुप्त रहाता है, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे सब निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है, अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा, दिन में पंच तत्व करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, तिव मन पीजे शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक की जय, अंतर चोर मुहे कर मंदर, इन साकत दूत न जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करें बेताले,

जुग चारे जम कंकर काल पर आता है जम दर बांधे मिले सजाई तिस अपराधी गत नहीं काई करण पलाव करे बिल लावे जो कुंडी मीन पर आता है साकत फांसी पड़े अकेला जम वस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त न सूजे आज काल पच जाता है सतगुरु बाज न बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवे कर कृपा क्यों सलले सलल मिलाता है फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए जिस गुरु सेव सदा दिन राती दुख पंजन संग सखाता है गुर की पगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश न जाने सतगुर अलख कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसे पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन एनत निर्मल ज्योत सबाई काट दीपक गुरमुख जाता है भोजन ज्ञान महारस मीठा जिन चाख्या तिन दर्शन जीठा।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चक्र करे विचारे, आपे करता कर

मस्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़े मनमुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना, लेके वड्डी देन उगाही।

पच पराख है, जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरमुख सब सलाह है। सुन सुन आख है कीर्ती बाणी, सुन कही है को अंत न जानी, जा को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, तीर्थ पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख

वखर जिस तन पल्ले शब्द पचै ओ माहा है। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मनसाचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिर्फ।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है मारू मैला पहला दखनी काया नगर नगर गर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्माइल।

गुर सबदी को लाएंदा, पीतर कोट गुफा कर जाई, नौ कर खापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा, पौन पानी अग्नि इक वासा, आपे की तो खेल तमाशा, बल्दी जल निवरे कृपा ते, आपे जल निद पाएंदा, तर्क उपाय तरी धर्मशाला, उत्पत पर लो आप निराला, पौने खेल किया सब खाई, कला खिंच टहाएंदा, तार अठारे मालन तेरी, चौर तुले पमने ले फेरी, चंद सूरज दो दीपक राखे, सत कर सूर समाएंदा, पंखी पंच उदर नहीं तावे, सफल्यो बिरख अमृत फल पावे, गुरमुख सहज रवे गुण गावे, हर रस चोग चुगाएंदा, तिल मिल तिल के चंद न तारा, सूरज किरण न बिजल गैनारा, अकत्ती कथो चेन नहीं कोई, पूर रहा मन पाएंदा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, हर हद रुण चुनकार सदा सुन निर

का कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे प्रवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएंदा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएंदा जेती है तेती तुद अंदर देखें आप बैठ बिजमंदर नानक साच कर।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए पाणे सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, विन पाने परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सबाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, किन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवडे आई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर, ममता मोह चुकाएंदा, दाना कै सिर दान विचारा, करण कारण समरथ अपारा।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं।

अछिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव न देहोरा गौ गायत्री होम जग नहीं तीर्थ नावन ना तो पूजा लाएदा ना को मुल्ला ना को काजी ना को शेख मसाई कहाजी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएदा पाओ ना पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं।

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। पौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे, दसवें वासा अलख अपार है। सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंगा। रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वड्याई। जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे शोभा पाएंगा। गर मह हाथ पटन वापा।

पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसे बुझाएंदा, नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जंदार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ लह अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का वापारी होवे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा, हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा, हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा, हुक्म उपाय दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा, काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर शब्दी पत पाएदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा, कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय।

तारे सुनने अलख अपार निरालम सुनने तारी लाएंदा सुनो तरत आकाश उपाए दिन थम्मा राखे सच काल पाए त्रिभवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समानी कुछ कुछ चलत किया सिर करते विस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन सदोय किए ओ पत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा साम वेद ऋग जुजर असर बन ब्रह्म ने मुख माया है त्रै गुण ताकी कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा सुनो सप्त पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएंदा राज्य तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरुमुख गुण

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा, पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएदा, उत्तम सतगुरु पुरुष निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया, जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया, ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निरा।

निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रसमाते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया। तू अंतर जामी जी सब तेरे।

किया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब रसाल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रहे निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फाती, नानक हर प्रभ सो पौ पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोट सबाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसैने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हौ में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जग पार लंगाया, हौ मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव करिए, अकल गाए जम से क्या डरिए, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कट है देख है अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुद्र अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमत ले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हौ मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुरु राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरो पग दुतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप, अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट

गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊंचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी। नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ सज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, ऐनस ज्योत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपुरे देखाया, सतगुर मिलो आपे प्रवतारे, सत कर सूर दीपक गहनारे, देख अदिश रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाये, बहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ये पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुविधा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगन अंतर तनख चराया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ को सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुरु जाने, सो निरपौ गुरु शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बार सो प्रभु जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्व तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मेला पहला, कुदरत करने हार अपारा, जीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम त्याए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तंते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सत गुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर से वो संत न की जय, आशा माह निराश रही जय, संसार दुख बिना सन से वो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडी आए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया, वाच्य है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करें विपूत लगावे पस में,
अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पाखंड की ने जोग ना पाये बिन सतगुर अलख ना पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम ना जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड तरम प्रीत।

नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाय, कर कर वेखे अपनी वड्याई, आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा, आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले देवड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई, मनमुख बहुत सुरे दिलांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई, गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम सबद सुख पाए, अंतर प्यार पगती राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपसे गुरुमुख

संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख थौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है, सतगुर सेवन सेवन पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछानी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम बसे मन आए, सतगुर अपना सद ही सेवे, हो मैं विच्चों जाई है, गुर ते बूझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत्त लूझे, सतगुर सेवे की वडियाई, कृष्णा फूक गवाई है, आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर ना कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आठ सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर ना होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत ना होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुख दाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राति मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

काया संगारे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रसता कह सच सोई है। हम मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे हुए सो होई है। बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हो मैं सब देखोई है। आपे गुण दाते

है। सात से ते पत होई है, मारु महला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता, एको अमर एका पत साही, जुग जुग सिरकार बनाई है, सोजन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रसी गुण गावे, दर्शा से पत पाई है, गुरमुख नाम मिले वड्याई, मनमुख निंदक।

पी वे पाय सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक गृह कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तय पाए पगत।

सच्चै शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है, एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है, स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है, आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है, सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है, जुग जुग साचा एको दाता, पूरे

من دیکھو لیو لائی ہے جو تس پاوے کوئی کرسی آپ ہوا نہ کچھ ہوسی۔

सूफी का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है। अवगणियारी कंस न पावे मन की जूठी झूठ कमावे फिर का साओ न जाने मूरख बिन गुरु बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब लेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है। हूँ मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुरु बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे सतगुरु सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेख करे न पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिन चलाई है। आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता एक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा सत साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कैचीर है सब कट भोग में सदा दिन राती आपे सुख निवासी है। सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है। किस सेवी तै किस सलाही सतगुरु सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है। देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है। हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। परम परम जोनी फिर आया आप पूला जा खसम पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बख्श ले सुख पाए सभी नाम निवासी है। तिर तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज अपारा सच तन जमया कोट न आवे अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय आपे बख्श ले नाम दी जय गुरमुख हो वे सो पत पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई गुरु प्रसादी बूझे कोई गुरमुख हो वे सो तन पाए सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम फुलाई माया मोह सुध न काई मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न संभाले अंत बिगूते पर निंदा करें बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख देव बुझाई।

आपे लाए ले जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वडियाई, गुरमत एवं मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी, एवं मन

मन मुख ना बूझे फिर आणी, जमकाल कड़ी मोत निहाले, अंधिन आरजा छीजे, अंतर लोभ करे नहीं बूझे, सिर ऊपर जमकाल।

गुर कै शब्द सदा जन सो है, नाम रसायन इउ मन मोह है, माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमति हर नाम पी जय है, सब नाम विच वरत एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौं मैं मार सदा सुख पाया, नाय साचे अमृत पी जय है, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किस आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जय है, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जय है, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जय हे, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जय हे, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पढ़ पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा

सच्चे सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे, बूझे कोई चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना, गुरमुख वो वैसो सच कमावे, साची करनी सारी है, कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवै सच प्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अन दिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया।

महला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा तिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह सबद पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्ने प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एको जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद।

इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक हो जाता है, जिस

दर सात चै सात पछाता है मारू सो ले तीजा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर गुर के शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे बसे शब्द।

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञानमती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तन कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आ गए, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विष काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर से ती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभ निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्षे सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हो मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हो मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करे पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे

खबर सलाह है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे।

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रविया कट अंतर शब्द सच्चै ओ माहे। नजर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता शब्दे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हौ मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तै बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहाहे। अफ्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर।

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मुख साहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा सब सुनाए, हम दिन भगत करो लिव लाए। हर गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पात सहा है। गुण का दाता सच्चा कोई, गुरमुख बिरला बूझे कोई। नानक जन नाम सलाहे, बिगसे सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा, हर जियो सेवियो अगम अपारा। किसदा अंत न पाये पारा वारा, गुर प्रसाद रविया कट अंतर। तित कट मत अगाहा है, सब में वरते एको सोई। गुर प्रसादी प्रगट होई, सबना प्रतपाल करे जग जीवन। दींदा रिजिक संभाहा है, पूरे सतगुर बूझ बुझाया। हुक्मे ही सब जगत उपाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए। हुक्म सिर साहा पास साहा है, सच्चा सतगुर शब्द अपारा। तिस दे शब्द निस्तर है संसारा, आपे करता कर कर वेख है। देंदा सास गिराहा है, कोट मदे किसे बुझाए। गुर के शब्द रते रंग लाए, हर साला है सदा सुखदाता। हर

सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब दे सेवै सो जंत्रा पै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सब दे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे ते

मेरे प्रभ साचे इस खेल रचाया, कोई ना किसी जिहा उपाया, आपे फर्क करे वेख विवसे, सब रस दे ही महा है, वाजे पौन ते

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल विकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावना।

गुरु कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुरु कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुरु कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुरु सेवा ते सब किछ पाए, हौं मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुरु कै शब्दे सोहा है, गुरु का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मल ताहा है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तथे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख फूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया तो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए।

हर रस पीने सदा त्यायन गुरमत शील सनाहा है अंदर रंग सदा प्यारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा नौ निध नाम वस्या सठ अंतर छोड़िया माया काला है रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक न होई एक त्यायन सदा सुख पायन नेचल राज तिनाहा है आमन जाना रखे न कोई जम्मन मरण तिसहते होई गुरमुख साचा सदा त्यावो गत मुक्त तिसहते पाहा है सच संजम सतगुरु द्वारे होमे क्रोध शब्द निवारे सतगुरु सेव सदा सुख पाई है शील संतोष सब ताहा है हाँ मैं मोह उपजय संसारा सब जग बिन से नाम विसारा बिन सतगुर सेवे नाम न पाये नाम सच्चा जग लाहा है सच्चा अमर शब्द तुहाया पंच शब्द मिलवा जावाया।

कारज न होवे, संयोग वियोग करते लिख पाए, किरत न चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर क्यों सद ही रह समाए, गुर कृपा से मिले वड्याई, होमे रोग न ताहा है, रस सस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पद बाद वखाने, कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस्ता है, सार वस छोड़े बाहर तावे, मनमुख अंधे साध ना पावे, अन रस राती रस

गुरुमुख सच्चो सच वखाणे, गुरुमुख सच्चे वै सच्चो सच्चा, गुरुमुख सबद सुनाएदा, गुरुमुख हो वै सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए, गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा, गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार, पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरुमुख हो वै मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए, जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाएदा, जा तिस पावे सतगुरु मिलाए, जा तिस पावे ता मन वसाए, अपने पाने सदा

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नाम में नाम समाएदा, मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे काप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आ

काया हर मंदर हर आप सवारे पृथ्वी हर जियो वसै मुरारे गुर के शब्द वंजन व्यापारी नगरी आप मिलाएगा सो सूचा जे क्रोध निवारे सब दे बूझे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएगा निर्मल भगत है निराली मन तन तोवे शब्द विचारी अन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएगा इस मन मंदिर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पे ते ठौर न पावे आपे खेल कराएगा आप अपरंपर आप विचारी आपे मेले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएगा।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कबू न टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमा

सतगुरु सेवे से सुख पावे सच्चे शब्द मिलाएंदा पौन पानी है बेसंतर माया मोह वर्त है सब अंतर जिनकी ते जात से पछाने माया मोह चुकाएंदा एक माया मोह गर्भ व्यापे हमें होए रहे हैं आपे जमका लेकी खबर ना पाई।

सच नाम शीतलाएं दा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कह शब्द पछाता सुगनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएं दा अगम अगोचर कीमत।

साक्षी आए मनमुख अंध ना चेतै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुरचरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख वो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होवा, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

को पाए दास। सतगुरु सेवै सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा। सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराए दास। सतगुरु ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया। मत्थे काले महल न पावे, दुख ही विच दुख पाएगा। सतगुरु सेवै सेवड़ पागी।

आपे दाता जिस देवे सो सच पाएगा, आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई, आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा, हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया, अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल कहानी पीड़ाएगा, पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई, जम काल किस नेड़ न आवे महल सच्चे सुख पाएगा, तिल सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए, तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा, अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

अपना पाना आप मनाएगा, तेरा पाना मन्ने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएगा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएगा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाएगा, सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की सेवा तुर फुरमाई, सतगुर सेवे ता नाम पाए, नामे ही सुख पाएगा, सब नामो उपजे नामो चीजे, गुर कृपा ते मन तन पीजे, रसना नाम से आए रस पीजे, रस ही ते रस पाएगा, महले अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मो सब रोग कमाया, बिन नामे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुरपुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निह चलवा सा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चे

इहो शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुखूले मोए बिल्लाए, जिनको नदर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त संभाले, हर का नाम त्याय दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

वेद पढ़े अंधिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा, गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए, साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा, जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते, सतगुर सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा, माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए, सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जानदे बिलम न लाएंदा, इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए, पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा, मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जीव मेले आप मिलाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवे करे अरदास, तू आपे मेल बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे, इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

सच पाया बिनकर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जमै चुकै न फेरी बिकाराता बिख कमावे सुख न कबहू पाया बहुते पेख करे पेख तारी बिन शब्द हो मैं किने न मारी जीवत मरे ता मुक्त पाए सच्चे नाई समाया अज्ञान तृष्णा इस तरह जलाए।

मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे सो चित लाया। हौं मैं विच सब जले शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी परमा।

मारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हों मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे सहजे सह समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रवे दिन राती ज्योति जोत मिलाया काया बिरख पंखी विचवासा अमृत चुगे गुर शब्द निवा

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी। हर हर करत सदा मन बिकसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है। जिन सतगुरु जाता

सतगुरु मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन

हर हर नाम जिन्ही सदा त्याया, तिन्ही गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी। जन नानक दास।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा।

थान थनंतर अंतरजामी सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा हर जस कीर्तन संग तन ताहा।

रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार से

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकत्रा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने पिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसें।

जो प्रेम बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

जम फासा है, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पा।

करहे भगत अर रंग अपारा, खिन मैं था पुथा पनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुकुम मन भगती जाहे, जिस देहे दर्श सोई

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु शास्त्र सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग नफास है, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक साथ संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को विघ्न न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले न जो है माई, सत संतोख दिया गुरु पूरे, नाम अमृत पी पाना है, गुरु की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी, जिन जिन जपी ते सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे सो

खंड पताल दीप सब लोआ, सबका ले वस आप प्रभ किया, ने चल एक आप अविनाशी, सो ने चल ज्योत सैंत आएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठे।

तिथे हर त्याय ऐसा रंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमाथा, क्यों मिलिए प्रवे परवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा।

सदा सुखवासी, बाल सुभाय अतीत उदासी, अनेक रंग करे बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, तामिली है जान ले मिलाई, गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी सब तरना।

दूजी अवर न जापस काई सगल तुम्हारी तारणा आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड़ दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होनहारा ऊंचा अगम अथा अपारा ऊने परे परे पर ऊने ए चलत स्वामी के कारणा मुख सालाही सच्चे सा नैनी पेखा अगम अथाह करनी सुन सुन मन तन हरे।

जय सतगुरु साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसे ते पायणा जाकी तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरुख सतगुरु परमेश्वर जिस पेटत पार परायणा पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे नाम कमाए रसायणा गुर के शब्द मरे पंच धातु पै पार ब्रह्म होवे।

की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा भेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जां की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संतें संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सत

सिद्धैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमरै नर नारी आशर्मा सिमरै जात जोत सब वरना सिमरै गुणी चतुर सब बेते सिमरै रैणी अर्दिना सिमरै कड़ी मूरत पल निमखा सिमरै काल अकाल सुच सोचा सिमरै सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिया इखिना करन करावन हार स्वामी।

परम रुणा। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन साध।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पे खारी जन बांचे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर औखद।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतिपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूर है एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही।

एको एक रविया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रव रविया, त्रिष्ण बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर कर्ता गुर सदबक्संद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना।

किंचन काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद तू साहेब हों से

तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा, एक ना पार लंघावे आपे सतगुरु जिनका सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुकम पठाया, जी जंत उपाय समाया।

नाही अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे ना आवे जम नेड़ा, कीमत कागज कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसे कहने बेड़ा, तिसे शरीक नाही रे कोई, किसी बुते जवाब ना होई, नानक का प्रभु आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा, मारू महला पंजवां।

सारे जगदीशर हर जियो असर संगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहा।

बहन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सत्संगा, पीत पीतंबर त्रिभवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुखपणी, सारंग तार भगवान बीठला, मैं गणत न आवे सरबंगा, नेह कंटक नेह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत, अस्थिर थान जिस है अपग्गा, पतित पावन दुख पै पंजन, अहंकार निवारण है पवखंडन, भक्ति तोखत दीन कृपाला, गुणे ना कित ही है पिगा, निरंकार अचल अडोलो।

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत न जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कै संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

लहरदय पराते सगल नाम निधान तिन पाया अनाद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा सत नाम तेरा परा पूर्वला कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फान।

सिमरत नाम अन दिन जागे, अनद विनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग न ताल का, रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन।

खुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू मेला पंजवा, इको अंकार, सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौनिद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

पूरन पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडपागी, बहुर न जोनी पावना, जिसनो बिसरे पुरख विधाता, जलता फिरे रहे नितताता, अकिरत कने को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन कहने रे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मेरे साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

पहला विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहे समाये, मोल अमोल ना पाई है वणज ना ली जय हाट। नानक पूरा तोल है कबू ना होवे काट। महला चौथा नाम विहूने परम सै आवे जावे नीत, इक बांदे इक टीलिया इक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी, गुर ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा। दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा, हर का नाम मन वस्या गुर शब्द विचारा। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा, सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा। श्लोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई सब दे करे प्यार, सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार। विच्चों मल कटे अपनी कुला का करे उधार, गुणा की रास संग रहे अब गुण कटे विडार। नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। महला चौथा चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे। तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई। सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बने आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई। हर स्यों प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है।

बेकार कमाए। नानक चानन गुरु मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चलदिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा। गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

जे सतगुर माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जाए, आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वर्ती जाए। गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुरु

मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या ले ओ, दरगह लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, पेखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोए, ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड अवर ना कोए, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे।

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार, इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी। दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा, शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा, गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा, सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा, नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा, होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार, मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नजर करे, आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे, अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे, गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे, सो हर सरनाई छुटिए जो मन स्यों जूजे, मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्यों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत दाहपन दुख कणो तीने था परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया।

जममग ना पावे, हर नाम ते आवे दिन सरात, हर नाम समावे। श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुर्ग मृत पयाल।

जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी होए मैले मरे गवार मैला तीजा दुख लगा बिन सेवे हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखेदा आपे दे सजाए नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामे तृप्त नाही दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही श्लोक मैला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए इस तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए मन मुख जगत निर तन है माया नो बिलाए अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए।

पाए रहो तिस बिन अवरना कोए खाना शब्द चंगे आईया जित खा दे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए सहजे सचतन खटिया थोड़ा कदे न होए देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी अंतर जब तब संजमो गुर शब्दी जापे हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस्त्रा पे हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे श्लोक मैला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना

महलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मने है सुख पाई है गुर सबदी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर सबदी दर जानिए अंदर महर असराओ। खरे पर खजाने पायन खोटिया नाही थाओ, सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ।

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आ

प्यार अंदर सुख ना होवई मन मुख जन्म खुआर नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा जित पावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा गुरमुख सदा सलाहिए सब तिस दे जचा जो नानक आप नचाएंदा तिभी को नचा सुध

देख कपड़ भोग डरावने जिचर पिरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आज्ञा होए वेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिशन महेश त्रै गुण विस्थारिया नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सवा

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चह भोग। पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुदे अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

श्रेष्ठ करण डखने महला पंजवा जे तू वत्तै अंगने हब धरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

आपे सतवंता, जति सती प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम्यो। महला पंजवा, पोरे पोरे।

जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे भरमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एव हर पाइया एक विचों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

खर्च रहंदा, लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा। ए वरी मित्र सब कीतिया न मंगे मंदा, लेखा कोई न पूछे जा हर बख्शंदा। आनंद भया सुख पाया।

पौड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जन वरताया।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

चित तू ता हबे सुख लहाओ, नानक मन ही मंज रंगावला, प्री तहंजा नाओ महला पंजवा। कपड़ भोग विकार ए हबे ही छार, खाक लोड़ेंदा।

मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित सो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को है कुड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटिया महला पंजवा।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन गुरन घटा अत कालियां बरसन मेघ अपार नानक संगम तेरी सुहंदियां महला पंजवा जल थल नीर परे शीतल पवन झुलार दे सेजड़ियां सोयन हीरे लाल जड़न दिया सुबर कपड़ भोग नानक तेरी विहूणी तत्तियां पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ ताम है प्राणिया पावे धुर लेना बिन कर्मा किसु न लभई जे फिरे सब धरना गुर मिल पो गोविंद का भय डर दूर करना बहते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म न मरना ज्याय कमाए ज्याया पाया साज सरना बोहित नानक देव गुरु जिस हर चढ़ाए तिस

पौड़ी कीमत कहन न जाइया सच सा अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोले बन्नन गरन समरथ है ओपत सब परले करन कारण समरथ है घट घट सब बोले रुजक समाहे सब सह क्या।

वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत

अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छोटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्म राम रहो, जटा भस्म लेपन।

राम उदग दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया ब्रह्म गया समुद्र है पार। उदक समुद्र सरल की साख्या नदी तरंग समावेंगे। सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे।

बिन गए अनुभव होए बना हम बे सौ दूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े हुक्म बूझे ता निर्भो होए बना हम बे।

पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देव जी की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद चार मुकत चारे सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहू जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत। देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत। जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद। राज भविकन अधिक करयो नवनिध ठाकुर दई सुदाम। धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस। नरसिंह रूप होय देत हर्यो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंध है झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ। आपस को दीर्घ कर जाने, औरन को लग मात। मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दो जस जात। कामी को दी चातुरी, बाजी गर्बे काम। निंदा

चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत थोड़ सादत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपया अघड़ घड़िया तहा अप्यो पिया मन आदि गुण आदि वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया रहा अर्ज को अर्जया सरद को सरदया सलल को सल सम्मान आया बदत जय देव।

आज काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न चीज है कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बसा।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बानी सासो हा गण नारे। नवघर थाप मैल घर ऊंचा।

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वह साध बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे तुझ बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हरता मैल पछाना। नानक वह साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे। खलता पैसर भार साधन बिनो करे।

सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे, बादों परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवे बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तै ही जाइए, असुन आओ पिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मेले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरियावल सहज पसे सो मीठा, नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पय बसीठा, कतन किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बले तत जलाया, दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मरे न सीजै गुण मारी तामरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा, मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे, नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे, भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रस सुख है, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडर धीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर स्यो पीत स्नेहो, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुर पावा सरनावा, गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुन्द समावा, पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया, मन मोह चुकाया जा तुझ पाया, कर कृपा घर आओ बहुते वेच करे फिर बाजो, मैली दहा न खाओ हार डोर रस पाट पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी, बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मुरत पर सारी।

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख अज

सच संभालिया ऐनिस देख बिचारिया दावत पंच रहे घर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरदिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट था पया सो प्रभ गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाताया पै तेई जड़ घर सबद पति नी सावरड़ा तिर पानी नानक सदगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोलावड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं बस

चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पो थापे किस भाव है सो हो वै नानक मीरा ही रह बेदया गुण कह हार करो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवरन दिस साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आनिया राम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समानिया राम बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत रुद्दा क्या करे बंधन बांधा इन विध छूटे गुरुमुख सेव है नर हरे।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन्ने उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

ए मन मेरिया गुण गावे सहज समा वही राम, गुण गाए राम रसाए रसिया गुर ज्ञान अंजन सारहे, त्रै लोक दीपक शब्द चानन पंच दोष संगारहे। वह काज निर्भव तरह दुतर गुर मिले कारज सारे, रूप रंग प्यार हर स्यों हर आप कृपा तारे। ए मन मेरिया तू क्या ले आया क्या ले जाय श्री राम, ए मन मेरिया ता चुकती जा परम चुकाए श्री राम। धन संच हर हर नाम वखर गुण शब्द भाव पछाण है, महल पर हर शब्द निर्मल महल घर सच जान है। पत नाम पावे घर सिदावे झोल अमृत पी रसो, हर नाम दियाये शब्द रस पाइये वड पाग जतिये हर जसो। ए मन मेरिया बिन कौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम, ए मन मेरिया बिन बेड़ी पार न अंबड़े राम। पार साजन अपार प्रीतम गुर शब्द सुरत लंघावे, जिन साध संगत करे रलिया फिर न पछोतावे। कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो, नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सत गुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुग्ध किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीस टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित एक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुरबचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला। जिनको तू हर मेले

स्वामी कब तिन का लेखा छुटक गया, तिन की गणत ना करो को भाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तिन ऊपर, जिन गुर का पाना मनिया पला, तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चला मैं प्यारे हों तिवे चला, तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ, जिनको तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या, तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो पया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी, जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी, जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार, हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी, तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी, तू थान सनंतर हर एको एक रव्या, वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया, सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे, सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे, सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया, तू थान सनंतर हर एको एक रव्या, तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले, जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके, हर गुण हृदय टिके तिस कै, जिस अंतर पाओ पावनी होई, बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई, पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे, जिस तू अपनी कृपा करे, तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले, तुखारी महला चौथा, नावन पुरब अभीच गुर सतगुर दर्श पया, दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे, हर पाया प्रभ अविनाशी, हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया, नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा, हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया, जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया, तीरथ उद्यम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ, खबर पई संसार आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया, जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ, दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया, जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया, सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया, द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया, सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया, आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया, मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे, सब पाग सतगुर पिछे पई, जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा,
पानबो

उल्का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थिओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुरबचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाई ठाकुर तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वंजा दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा। अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करे ता पीवा। आस प्यासी पिरके ताई जो चात्रिक बूंदे रे। कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहिब साओ अमिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुखदाता गुरमुख जाता सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीशर तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निंका। केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन राम नाम नित गाविये रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुर पूरा मिले लखाविये रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लाविये रे। सबको भगत करे हर केरी हर पावे सो थाए पाविये रे। हर हर नाम अमोलक हर पै हर देवे ता नाम त्याविये रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छड़ाविये रे। हर नाम अरादे से तन जन कही है तिन मस्तक पाग तुर लिख पाविये रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे ज्यों फुत मिल मात गल लाविये रे। हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे मौको देहो मती जित हर पाविये रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लाविये रे। केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो। इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजे हर गोष्ठ साधु स्यों गोष्ठ। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता। एहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी हर संतन की कूर कर हरे। केदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी।
त्रय रंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बिदानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपतानी। देख समोदर रहस मन उपजो नानक प्रिय अमृत बानी। खिलारा महला पंजवा कर की जा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल रहाओ अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो उपाव सगल कर हारियो। नह नह हुते बिकराल शरण बंदन करुणा पते। पाव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल। प्रभ चरण नानक आसरो उदरे ब्रह्म मोह सागर। लग संतना पग पाल केदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान। नाम प्रीत लागी मन प्रीतर मांगन कौ हरदान। रहाओ सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान। देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान। नानक कहो हर कै रंग रागो चरण कमल संग त्यान। केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो। कर कृपा सत्संग मिलाओ तुम देवो अपनो नाओ। रहाओ करो सेवा सतपुरुष प्यारे जब सुनिए तत मन रहाओ। वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रत पाले सगल संभाले सगलिया तेरी छाओ। नानक के प्रभ पुरुष विधाते कट कट तुझे दिखाओ। किदारा महला पंजवा प्रेय की प्रीत प्यारी।

कपट तपट बुझ तृष्णा जीवो पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

मोह महा मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभु जियो होए साथ। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिख्या रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात। केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद विसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल कही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना देव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध सरी। किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक हान नहीं निहोर। किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान। किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्याप संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार। किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं।

जन्म मरण दुख हारे कर गए लीने नानक दास अपने राम नाम उरहारे। राग केदारा।

दादौ विवर्जत तजो मान अभिमान लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत भगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ रज गुण तम गुण सत गुण कही है ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक प्रगासिया अंधकार कहनासा निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी कहत कबीर सुनो रे संतो निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार।

रहाओ। राम ना जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल ना दूरे। अनक जतन कर एहो तन राखो, रहे अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या तो करे परानी। जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद ए बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारथ जाए।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरथा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर्कु तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जानस एक को दर्श प्यारा गुरु प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो सात रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाईए अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाईए गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पकारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिसे जग जन्मा
बिक खावे बिक बोली बोले बिन नावे ने फल मर प्रवना राव पुस्तक पाठ ब्या करन वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बांधे पेख पया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देसो ब्राह्मण होए, जात का गर्भ न कर मूर्ख दा वारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, काटवद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई, पैरों मैला तीजा, जोगी ग्रही पंडित पेखता।

खिन में बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

किरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, भरत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों मैला की जा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पा।

सतगुरु मिलाए। नानक हृदय नाम वसाए पैरों महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लो गुरमुख जिना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे गुरमुख नाम वडियाई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार आप उदरे सब कुल उदारण हार। बिन नामे मनमुख जम पुर जाए औखे होवे चोटा खाए। आपे करता देवे सोए नानक नाम प्राप्त होए। पैरों महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द विचारे। हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ। अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए। निज कर वसे सहज सुभाए गुरमुख नाम वसे मन आए। आपे वेखे वेखन हार नानक नाम रखो उधार। पैरों महला तीजा कल युग में राम नाम उधार। बिन नामे माथे पावे चार राम नाम दुलभ है भाई। गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ। राम नाम जन पाले सोए पूरे गुर से प्राप्त होए। हर का पाना मन्ने से जन प्रवान गुर के शब्द नाम निशान। सो से वो जो कल रहा तार नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरों महला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म खाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार रहाओ। तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लिहो जमाई। पैरों महला तीजा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मनमुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा जन्म।

सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए चौथी पदवी गुरुमुख वरते तिन निज कर वासा पाया पूरे सतगुरु कृपा कीनी विच्चों आप गवाया एक तस्की सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया नानक ने चल साचा एको ना ओ मरे न जाया पैरों में लाती जा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाई जो राम नाम चितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे जिन हर राख्या उधारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता।

शब्द बिचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवा।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ। आपके पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरमुख मन वसाए आप तरे सगले कुल तारे जिनी राम नाम लिवलाए मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब उच्च पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ हम दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुर जिनी न सेविया, दाता से अंत गए पछताए, सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति ज्योत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई, पैरों महला तीजा, हों मैं माया मोह खुआया, दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव आए, नानक नाम समाए पैरों महला तीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो काल सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए, दिते संत जना को आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण। किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन भगत करे दिन राती, दुबदा शब्दे खोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने मूर।

गुरु उपदेश सब दुख पर हरे। मेरे मन हर पज नाम नर हरि, कर कृपा मेलो गुरपुरा, सतसंगत संग सिंध पौतरी। रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी, कोट कोटंतर तेरे पाप पर हरी, सतसंगत साध तूर मुख परी।

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिए सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, हिच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझ ते बाहर कोई ना है, हर सुखदाता।

जिसको तुम हर राखिया भावे तुझको नेड़े कोई न जावे तू जल थल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर पैरों मेला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूरत जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक पाग होवे जिस लिखिया

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते ओ पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों मेला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का दे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नक काटे सुजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले हर

चौथा सत्संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्री वैनित चरने जग जीवन हर त्याए तरने अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इक गणने रहाओ गुर सिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख कने तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास गिरास आया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच पगता हर तरने नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवने पैरों महला पंजवा कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास दार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम पूले नर करक कचरायण जन्म मरण के रहत नारायण राव कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म ना मरे रे साकत टोर सगल पराग देहे लोरो नी सो मुख जलो

आया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया जैसे दैदिस पवन चुलाया दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को

हलक पलक जांची सच्छाम रहाओ। तब आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनती विपरीत, नीत हीत तन ने पारणा, तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरों महला पंजवा, आगे दे पाछे नारायण, मद भाग हर प्रेम रसायण। प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द वजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए, नानक प्रभ शरणागत आए। पैरों महला पंजवा, कोट मनोरथ आ

राज माल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना।

हर जप जप उभरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखे नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप कमाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा कवन बिछया रस माता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है तित बिगरस पाज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का सात कहते मेरा अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप कहे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तारे पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए संत संग पेख्यो मन माए पूब प्याल सर्व में पूरन रस मंगल गुण गाए रहाओ जोग पेख

पंजवा जिस तू राखे कुछ कौन मार है, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है। कोट उपाव चितवत है प्राणी, सोहो वै जे करे चोज विदानी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरबार राव। जिनसे व्या निरपौ सुख दाता।

जन नानक अपर न साचे कोए, ठहरो महला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरे नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सब ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुक को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोय पतंगा, नाग रोग खप गए।

बासन रोग पवर बिनसानो, पेट रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी नी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी,

मन मानिया नानक भगवंता कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया।

गुरु तय हो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन का दिखलाया जिन गुर सेविया तिस पौ न व्यापे जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापे नानक सो देव सुमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही पेद पैरों महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट पाया नाम लैत पाप तन ते गया नाम लैत सगल पुरवाया नाम लैत असठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुरु उपदेश तप ज्ञान रहाओ नाम लैत दुख दूर।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्टि दुख दे रात है, अमृत नाम शीतल मन गह, अनेक पगत जा

आधार कहो नानक जिस आप दियार हैरो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिधारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संतार।

जपना कहो नानक जो जन प्रभु पाए ताकी रेन बिरला को पाए पैरो महला पंजवा सुतवत पाप ना आलक आवे बेसुआ भजत किसने शरमावे सारो दिन मजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर है।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया। पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भक्तन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभु कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते सही प्रदान नानक जा कै नाम विधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता।

स्वाद रंग रसमाने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विलास हौ बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभु मेरे गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके कर्तव्य लते न जाए, जाका परवासा सब कट माए।

नानक आया सो परवान। पैरों महला पंजवा संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दूप साम, दान दैत निंदक को जाम। संत संग करें जो बाद, किन निंदक नाही किसाद।

चाहे निर्मल मना सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नहार स्वामी।

मान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौ न से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आप मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रति

अल्लाह कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम तिराए हर हर, हर

0: सोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

नानक को गुरु तय दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त।

कोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए, आवन जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभु की लीलाए, बिन से काम क्रोध अहंकार।

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ, तीर्थ नाए कहाँ सुत सैल। मन को व्यापे हो मैं मैल, कोट कर्म बंधन।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुरु प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिदमाए निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर देव चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रब की ओत गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम कै रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मनया।

नारायण आद जुगाद भगत गुण गायण तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कै मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरो महला पंजवा पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्स बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

निर्मल ए थोक कर कृपा लीजै लड़ लाए चरण कमल नानक नित त्याए पैरों महला पंजवा सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड़ समरथ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जा का किया सब किछ होए तिसका अमर नामे तै कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप जा के अंतर बसे हर नाम।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुतरंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं पढ़ो अचार।

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया।

त्रिष्ण बुझाई। हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मने समाई। हर जियो कृपा करू मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन, जन मांगे गुरु।

सुरत न पाए, मन मुख मरे तिन किछू न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मोए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिव लाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तेरे

जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरुख परवान, नाम बिना फिर आवन जान, तिन नाम पाया।

कहो नानक तत्तै तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय समाए।

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो।

पर ईत ऊत की सोजी परे कौन कर्म मेरा कर कर मरे। निज पद ऊपर लागो त्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे बंदिया बंद रब ऊपर घे राख्या चंद। पश्चिम द्वारे सूरज तपे मेरा दंड सिर ऊपर बसे।

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

भूत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ,

दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड़।

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामी प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहू न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बारिक अरमाता, ऐसा हर सेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत।

जपताना। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रह मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत न देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए। ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब है।

जो गुरुदेव तसीस आकाश, जो गुरुदेव सदा साबास, जो गुरुदेव सदा बैरागी, जो गुरुदेव पर निंदा त्यागी, जो गुरुदेव

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूं मैं सुरत विसार, हूं मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

तौ पव जल के तूटस बंद बसंत मैला पैला। सगल पवन तेरी माया मोह मैं अवर नदी सह सर्व तो हो। तू सुरनाथा देवा देव हर नाम मिले गुरचरण सेव। मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरमुख राम नाम गुण गाए। तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग। बिन गुर मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध।

गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए। गुर

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम विप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टैग दीवाल काहे गचलावो, रहाओ कर हर हच माल टिंड परोवो।

दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी बस सब किस सांझी

नानक हर गुरु संग थिए बसंत महला तीजा सर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुरु प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब जी जंत क्या हो आखा किरम जंत तेरा किने न पाया आद अंत।

जीवत मरे अंदिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोय फल लाए।

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यो पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे।

गुर के शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चे पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनु एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसे मन आए भगत करे सद वेखे हजूर मेरा प्रभ सद रहा परपूर इस भक्ति का कोई जाने पेओ सब मेरा प्रभ आत्म देओ आपे सतगुर मेल मिलाए जग जीवन स्यो आप चित लाए मन तन हरिया सह सुभाए नानक नाम रहे लिवलाए बसंत महला तीजा भगत वचल हर वसे मन आए गुर कृपा ते सह सुभाए भगत करे विचों आप होए तभी साथ मिलावा होए भगत सोए सदा हर प्रभ द्वार गुर कहे साचे प्रेम प्यार रहाओ भगत करे सो जन निर्मल होए गुर शब्दी विच्चों हो मैं खोए हर जियो आप वसे मन आए सदा शांत सुख सह समाए साच रते

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखे सद हजूर छावकणी फूली बन राए गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक को चेते फिर जून नावे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम से वो विच्चों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै शब्द जग माए समाणी चहो जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट हो।

एको करता अवर्ण कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन सच सेविया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम सुमाया, बसंत महला तीजा, भगत करे जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर खेती सद रहे लिव लाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ, एको सेवो अवर न कोए, जित सेवे ऐसा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, जिस बिन अवर सेवी क्यों माए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक स्नान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मनमुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाये, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

ले पाए सो बुझे जिस आग बुझाए सतगुर सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निध

संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ता एको जाने चहत नानक हो मैं कहे न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुरु पेटे मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए पले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम रखे उदारे मन बसंत तन

पूरे पाग हर पगत कराए। इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ। ए मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए। ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे। ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह सबद जलाए।

टूट तिना की अकुलिये पाए, सब संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरे आ की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाए, शब्द मिलावा होए, राग बसंत मैला चौथा हर पहला इक्कु के इक्कु ओंकार। सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण जोत, ज्यों कट कट रमैया ओत पोत, एको हर रविया सर्व थाए, गुर सब दी मिलिए मेरी माए, रहाओ कट कट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिए एक प्रगट होए, एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर, एको एक वरते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए, बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए, मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, पंत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिले।

राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देव मिलाए।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विकमल परया, मिल संगत कर प्रभ हंसे, रहाओ तुमरा जन जात अवजाता।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हो मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है। गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाई है रहाओ। कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह ना सकाई है, जो ओडा कूप गोज खिन काड़े, त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ कुन फल पाया, कौडी बदले जाई है। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाई है। बसंत निंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकड़े काल सलुंज। गोविंद जी ओ बिखो में ममता मुंज, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज। राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तारो।

पग तारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण इक गुण ना जान, हाँ कछु न जानो तेरी सार,

टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी। जिन तू सेव्या सुखी से संत।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस। किलविक काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग। गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे। सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण। जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट देख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुरपूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवे बिन सत गुरु दी सै बिल लांती। साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत प्रभु कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मई अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभु जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल प्रगास, बसंत महला पंजवा।

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर साप सांस सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप।

अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले टिक रहे सूख कथूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ, कर्म तर्म तुम चौपड़ साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो। ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इस नाम करो प्रभाते। सोए हर आराधे, बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुरु। सुख सहज से ती कर जाते, हर आते खेले आते देखे। हर आते रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले। सो जिन बाजी कर आया।

है भाणा कहु नानक कह कया द्वारे रख ली वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मेला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

की गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, न अस्थिर दिसे एक।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावो, नानक हूँ मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए कर तारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था की

व्यापे खट खट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधू

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के चाकर

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीत।

आपे जल अपरंतर करता, आपे मेल मिलावे, नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवां।

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

राजा कब मंगन हार, दुख सुख बादो संसार, मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत बितार, से छोड़ चले।

बहु अपार कर कृपा लड़ने हो लाए। नानक दास प्रभु की शरणाए बसंत की वार महला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाए। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर न ताए। पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ दिन रह नाम से आए दा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजिया नाम का

अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हास्ता, निद्रा बिन नर पैसोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट

कह कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। इस तन मन मदे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर। मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, को ना बिगू तो मैं को आहे। मादो दारन दुख सहो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहा बसाए। रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभि कमल जाने ब्रह्माद। सब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाओ मोय था नाहे, प्रभु दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जन्म मरण दुख आप हीर, सुख सागर गुण रहो कबीर। नायक एक बन जा रे पास।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट दैदिस टांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर।

पेट खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

जैसे पंकज त्रुट तुहाकती सर पोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उबजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल इस पर में है सो

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर फूलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे पाग सत

उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपाधारी। नानक जिन को नजर भई है तिनकी तै सवारी। सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम दिहो प्यारे। जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाओ। जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे। अन दिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे। हृदय नाम अमृत रस रसना।

मन मुख प्रम दूजे पाए लाजे अंतर अज्ञान गुबारे सतगुर दाता नजर ना आवे ना उरवार ना पारे सर्वे कट कट रलिया स्वामी सर्व कला कल धारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सुसा

मेरा मन राम नाम मन माने, मेरा ही रह सतगुरु प्रीत लगाए, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी। नैनी बिरहों दे

तिल तिल पल पल औध फुल घाटे बूझ न सके गवार सो किस करे जे साथ न चाले त्यो साकत का आचार संत जना कैसे।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गाओ।

पंच शब्द वद पाग मथोरा। तीन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर हर अराधु, हर के जन साधु हर राम बोल, हर राम बोल सब पाप गवा दू। नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा। मन इच्छे फल पावो, सबे फल पावो, धर्म

पर भवन करत रहत निराहारी। तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो पावत हर राम मुरारी।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्रिक जो जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ। जाको कोई

निष्बासुर प्रिय प्रिय मुख तेरो, नींद पलक नहीं जागियो, हार कजर बस्तर अनक सिगार रे, बिन फिर समय दिख लागियो।

अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध, ते ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

नाम अमोला प्रीत ना किस्यों, पर निंदा हितकार है। छापर बांध सवार है तृण को द्वार है, पावक जा रहे कालर पोट उठा।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन वेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेका किस

जगदीशें, खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, अंदिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

और ब्रह्म तिराय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल दिनासे जो आवे हर संत सरन। आप जपे अवरे

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई राव।

आयो मानस जन्म गुलवाई गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहाँ लुभाइए आन कहो, ईत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे सगल।

आए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम के आए।

कृष्णो अर्पेखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिनस लख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, कौ नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्निवा, अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक देखा रहा।

जो अल कमलालो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यों मन माना साध कृपाल दे।

मेरे मन सीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुन।

मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पय अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये के दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रह बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहाओ।

तिल विख गए मन निर्मल होई है, गुर का दे माया द्रोहं, कहो नानक मैं सो प्रभ पाया, करण कारण समर्थो हं। सारंग महला पंजवा, नैनो देखो चलत तमाशा, सब हो दूर सब हो ते नेरे, अगम अगम कटवासा, रहाओ अपूल ना पूले, लिखो ना चलावे, मता ना करे पचासा, किन में साज संवार बिना है, भगत वचल गुण तासा, अंधकूप में दीपक बलियो, गुर हृदय कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेख सुख।

हृदा पुनीत हृदय हर बस्यो मस्त पुनीत संत दूरावा सर्व निधान नाम हर हर के जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक को गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अंत बिहावा सारंग महला पन्नवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे कहाँ कहाँ तू रखा रहा अंधकूप गृह में तिन सिमरियो जिस

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हौं बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संकन स्यो बनाए सगल निधान करे में पाए, कहो नानक जोत समाए सारंग महला पंजवा, ओं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तो बचन दियो मेरे सब

आई, जैसे मात पिताए तिस बिन निमक नहीं रह सकी है, बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई सारंग मैला पंजवा। अपना मीत स्वामी गाये, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभ ध्याये रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर, तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो, तो लाज लोन होए जाये। एक ओट पकड़ी ठाकुर की, गुरमिल मत बुद पाये।

और खुद मुखदीनो जाए पया गुर पैरे कमन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरे सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन ते पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु।

मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या पोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता पुरजियो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी उहा नाही जह भारी तिन स्यों राज मात हित लायो।

देवन हार बिसारे वंदुले जो सफरी उदर भरे बह हातुले साध बिकार बिकार चूत रस जय जानो ते वीर बातुले कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठले सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो जो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखार प्राण मन तन जियो।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाये वडभागी, नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम्हारे पाए, अनेक जोन प्रमते

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो

निर्भव भय सगल पहु मिटिया, चरण कमल आधार है, गुरु के बचन जपियो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है, सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप, ज्यो जानो त्यों रखो गुसाई, पेख जीवा परताप रहाओ, गुरु उपदेश साध की संगत, बिनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो, सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक।

रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे, दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद्ध धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने ग्रह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन। खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

एक सिउं लिवलाओ कहो नानक ताकी सरनाई, देत सगल अप्याओ सारंग महला पंजवा, होती नहीं कमन कच करनी, यह ओट पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रहाओ, पंच दोख छिदर या तन में दिखे।

हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय है।

हारे सच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बिचारा कमन मूल से मानुष करया।

है निर्मल बहुर जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तू निथावे थाओ सास सास संभाल हर हर नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन नेचल हर का नाओ भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाये सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको जाता अंत न पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंधन तोर राम लिवलाई संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कह मुख लागे का लेखा जा कह रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, बिनस जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे कुर को लागे, सोई तुरंतर सोई बसंदर, हर एक

भगत गुण गावत गीदे होहत ने संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार। नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख को।

होए एकत्र मिलो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए, तेते बिरथे जाहे। पूरन परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन, तुलना कछु लाहे। चरण कमल नानक मन भेद्यो, चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले बिसर ना कभी जाए रहाओ मन तन तन सब तुमरा स्वामी आनना दूजी जाए जो तू राखे तिव ही रहना तुमरा पेने खाए साध संगत के बल बल जाई।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी थक।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। शांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कमल।

अनिक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

अपना प्रभु त्याए, रतन जन्म अपार जीतियो, बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद, पया साधु संग, हर चरण रास।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

पंजवा हर के नाम की मत सार हर विसार जो आन राचे मिथन सब विस्तार रहाओ साध संगम पज स्वामी पाप होवत खार चरनार

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक शरण।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण।

तज अभिमान शरण संतन गओ मुक्त हो है छिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, शुद्ध रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अनपो बिसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोइलिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रसरते अधिकाई, एक कस्बिन में अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

सब आत्म राम मुरारी, सेवक सेव रहे सच राते, जोते रहे मन भाने, दुबदा मैल न पावे जग झूठी, गुण अवगुण ना पछाने, आपे मेल ले अकथ।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर्ण।

जा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल।

गुर बूझ बुझाई सच संजम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचे साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा।

काट काट कथा राजन की चाले, कर कर तुझे उमा जी जंत सब पाछे करया, प्रथमे रिजिक समाहा जो किछ करना।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देशा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाई है गुरु प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

जिनको दितिया तिना मिले पंडार। जय पंडारी हूँ गुण हितले ते की है परवान, नदर तिना को नानका।

आए मूर्ख अंधिया अंधी तात कह कह कहन कहाएन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख न जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे।

आँख न जापे आँख पौड़ी, नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई, नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई, नाई सुनिए नाम उपजे नामे वड्याई, नामे ही सब जात पत नामे गत पाई, गुरुमुख नाम से आई है नानक लिव लाई। श्लोक महला पहला, झूठ न रागी झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की पेदी, झूठ न अन्नी झूठ न नाई, झूठ न मियो वरे सब थाई, झूठ न करती झूठ न पानी, झूठ न पौने माई समानी, नानक निगुरिया।

पौड़ी नाय मने दुर्मत गई मत प्रवती आया नाव मने हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मने सांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अगे तुद आखा तुद अगे तुद सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखन साही सबदी पाख्या पाए सुवाई नानक बहुता एहो आखन सब तेरी वड्याई महला।

जो उस इच्छे सो तल पाए। ता नानक कहिए मूरत पौड़ी, सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर सब दीन लिया, सतगुर के पाने जो चले हर से तीर लिया, जम काल जो न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला, सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान स्नान, दया देवता।

कितना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत कितना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खारे जे दिन गुण गर्भ कर।

नानक जो देवे तुसे ना जाननी, मनमुख दुख पाई श्लोक महला तीजा। पर पढ़ पंडित मुनि थके, दे संतर पल थके तेख तारी। दूजे पाए नाव कदे ना पायन, दुख लागा अत भारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवे, माया कै व्यवहारी। अंदर कपट उदर

वस्त्र पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गनाए, नानक बिन बूझे किने न पायो। फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सर से सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना बिछड़े कबहू, ये आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया, सगले दुख निवारे, हर सुख दाता।

वही नाम वसे मन आए, बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस्ता सब चलाना आपे ले मिलाए, महला तीजा जिया अंदर जियो सब।

सिमा हर गुरमुख नाम दे आए दुख पुख काना सब चुकाए सी मिहु उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अनजमिया बोल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर तिसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीत पगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख सुख ले जाए जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुरपुरे की दात नित देवे चढ़े सवाई।

आप छोड़ शरणाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर त्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा कीत पाए उत ही ते, उत ही मन समाया।

जिन तन तिर का साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी कई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म पुलानी बरस कना मेरा तिर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहा नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों हम जिन पगत सुहावी मुक्त पय गुर बरस दिखाया जुग जुग पगत सुभावी हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया दौर न पव जल फेरा अपने तिर हर देश विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन सो सत साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पट पाई नानक राम नाम हृदय अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा हों मैं बिछै बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर।

प्राप्त गुरदाता दे मनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसमें राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाई है।

कह न जाए क्या कर आंख बखानिए मारे रहाओ ऊपर बर समान पैल क्यों कर कहीं दो विचार बिन जेवा जो जपे।

मानस का तल तब में सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटे से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर

ले हूँ मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करा दिन राती सच रहे लिवलाए, सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए, मन रे हुक्म मन सुख होए, प्रभ पाना अपना भावदा, जिस बक्से तिस बिघन ना कोई रहाओ, त्रै गुण सबा पात है, ना हर भगत ना भाए, गत मुक्त कदे ना हो वही, हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथिए।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पीजा गुरमुख कोई गिरना बूझे जिसनो

वाले गुरमत सत्संगत ना बिछड़े आंदन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बख्शे पगत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दे हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चितलाए मल्हार महला की जाए गुर सावाही सदा सुख दाता।

एक को एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हों मैं मार सब मन वसाया।

दात शब्द सुख अंतर सदा निभे तेरे आल राव। मन मुक्ता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए। ए वेला सुर हाथ नावे हम दिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मैं समाए। गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याए।

तस बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदुष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द

इहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूजो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अनदिन एको नाम बखाने। सतगुर की ओ दीखिया ले, सतगुर आज्ञा शीश करे, सदा अलग रहे।

कृपा होए, अनदिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक न होए, मलार मैला तीजा, प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई, सतगुर सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभ मिलया महल कर।

सब लागो पाए हों जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंदा तर्क निहाए मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम ले लाई पूरे लालच ना लपताई। जो कुछ हो वे सह सुवाए हर रस पीवे रसन रसाए। कोट मदे किसे बुझाई।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर वह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है गुरमत।

थोड़ा सहा ना जाए, सतगुरु मिले का मिले सुवाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन पागा नाम न पाया जाए, बहुविधा का कर्म कमाए, त्रैगुण बाणी वेद विचार, बिखिया मैल बिखिया।

हर हर प्रभ कृपा धारी। नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी। हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर महकारी। हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर उर्द

गुरपुर हूं मैं तीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किलविख मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार था प्यो महसारी। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब कितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले।

साधु तूर दे हर पार लंगाई। मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे तिसकी भूख दुख सब उतरे। जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे, गुर के बचने करम सुन ध्यावे अब सागर पार करे रहाओ। किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे, हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे। हर जन को हर भूख लगानी।

कोई देखवाने ओ आप बीज आते ही खाते हर का चेहन सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अन दिन अंध भया।

0: किन संगत हर मेलो करमया, किन का दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अंगिन हृदय नाम दिया है, सब जन तिना का सफल भया, वो आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभ कृपा धारी, दिख दुखदा पाब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेतें, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मद्दन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

ए मंदर कर अपनाए। जो गृह लाल रंगी ओ आया तो मैं सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे फिर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक संत रंगीला पाया फिर दुख न लागे आए। मल्हार महला पंजवा खीर आधार बारक जब होता बिन खीर रह न जाए। सार संभाल माता मुख नीर तब हो तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभ दाता फूले बारक अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहा। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले। माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी। नवनिध नाम निधान गृह तेरे मन बांसे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना। मल्हार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया। सजियो सगल अंदेशा कारज सगल अरंभियो करका। ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी। पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए। खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो निर पाए। जब त्रय आए बसे गृह

गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का ती हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमय बहुजोनी एक न काहू तरते रहाओ।

नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते। राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह ना सको। प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे।

कृपाल पे बड़ पागी मां सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती ए हो मैं कीटी ठाई तई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तो तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पर सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दुखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख न थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतु धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवा हजूरे नानक रव रहो सब अंतर सर्व रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर के भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जग किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग

नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओठ जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवि जय, दर्स प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम महारस्ती जय, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहाओ।

महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार। गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो। सांस गिरास अपना खसम त्याय।

जाए कर कृपा पूरन सुखदाते तुमरी कृपा से तू चित आवे आठ पैर तेरे रंगराते रहाओ गावन सुनन सब तेरा भाना।

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप। नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान। साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए। साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए। नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ। सत गुर जेव

सो मन निर्मल जो गुर संग राची गुर पूरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मन ते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मलार नैला।

नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविद रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तोहार।

संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कनकोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया। मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत। मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

हे समरथ अगम पूरन मोहे मयाधार अंधकूप मोह भयान। नानक पार उतार मल्हार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चकवी

लाई। शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाई। कम हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह न सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी तिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई। गुण संग्रह

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुरु प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रह न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पै खंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंध नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन साकी सच मत हृदय समाई।

गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालन हार, जित कर वसे तू है बिद जाने बीजो महल न जापे, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर सबक सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पैना

आए एक शब्द राचे सत समाए चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा चौदिस नाम पतालं सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा कर्म मिले बयालं जामन मरणा दिसे सिर उबो खुदया निद्रा कालं नानक नाम मिले मन भावे साची नगर रसालं मलार महला पहला मरण मुकत गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आर फाथी जाल अलख न जाचे हृदय समाल रहाओ एक जी कै जी आखाही जलत तरती बूढ़ी जलमाही सर्ग जी की ए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फांस

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सहै मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै

तिस जेवड़ अवर ना कोई आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे मन संतोखिए सच रहे निवलाए।

हर सिउं रहा समाए मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है।

चित कट ना मैं नाम निवास, हों मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजे ना सुखोए, कह कह कहन आप जनाए, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुरु मन भाए, हम दिन नाम रहे लिवलाए।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीश रै। मन मोह लीना चरण

नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मा।

पाया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिले मन रहस्य ज्यों उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी छे लाल कमल विग से सच मन गुर के शब्द निहाल।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर सब

गुरु नानक सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत विछोड़ चंदोआ ताणिया गिण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरंग विचार नावन पुरबाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्दना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया ना किस भुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंग दे लाए आप छपाया।

कंतै चित करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सौन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथु पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया। आप पेड़ मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवाणी है। सत संगत मेलाप जिथे हर गुण स्वभाव खानी है। नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणी है। श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग। रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए। नानक तै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा। ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग। नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वरत्या वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या। परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रह बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया। गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया। सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंगार उठे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार उठे सतगुरु बेली होवे कर ले अंती वार इना जनता नो हो सेवा नहीं सतगुरु सिर करतार। श्लोक महला तीजा बाबी हा जिसनो तू पुकार दा तिसनो लोचे सब कोए अपनी कृपा करके वससी मन तिन हरया होए गुर प्रसादी पाये विरला बूझे कोए बैंदिया उठदिया नित बिहाइए सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही वरसदा गुरमुख देवे हर सोए महला तीजा कलमल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए सच्चे सुनया कन दे तीरक देवे सह सुवाए इंद्रे नो फुरमाया गुठा छ बरलाए अन तन उपजे बहु कणा कीमत कह न जाए नानक नाम सलाए तू सबना जिया देंदारी समाए जित खावे सुख उपजे फिर दुख न लागे आए पौड़ी हर जियो सच्चा।

जो हर चरणी रह लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग करे नहीं जो हर के अंक समाए।

नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार, नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मुरार।

कार्य गुण में रह समाए, अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ न पाए। विण नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ ना वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवगल वन। महला तीजा, बाबीहा जल में तेरा वास है, जल ही माह फिरा है, जल की सार न जान ही का तू कूकन पाहे। जल फल चहो दिस वर्ष दा खाली को ठाव ना है, एते जल वर्ष दे तिख मरे ताग तिना के ना है। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी, नाथ गति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पियाए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कै सिर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, एहो जल सब कै वरसवा, वरसे पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले, जो गुरमुख रहे समाए, नानक नगरी सुख होए, एना जनता का दुख जाए। महला तीजा, तिन्नी रैन चमकिया, गुठा छै बरलाए, जित गुठे अन तन बहुत उपजै, जा सहो करे रजाए, जित ठा दे मन तृप्ति है,

सब में एक वर्तदा। सिर सिर करे विचार, गुरुमुख आप विचारी है, लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी है, आपे देवनहार। श्लोक महला तीजा, बाबी हाँ एहो जगत है, मत को परम फुलाए, एहो बाबी हाँ पशु है, किसनो बूजन नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरुमुख जिन पिया, तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा, मनार शीतल राग है, हर त्याय सांत।

गुर प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुरा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा ना जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असा

कोई एक राजे खान मलूक कहे कहा में कोई एक सदावे संत धन दूजे पट कोई एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई बिना में बाजारिया पिहावल होई पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु के काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

शब्द मन मारिया एनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर्धारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निधान है असी अवगण यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न विहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया कोई न सके जम काल सच्चा रखवालिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख विण नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सबद निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कै सह सुवाए मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बरलाए बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सो साल आई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए नदर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक वन खंड बैसे जाए सदना दे रही एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही विणना में तन चार क्या कह रो वही सोहन खत्म द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार हो तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विचों जाए विकार पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुर

दिन रात शब्द ना पाया, तीन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया, बिन शब्द आचा

गुरमुख शब्द संभालिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर पर तीर्थ जान मनुआनाया, शब्द मरे मन मार

गुर कै सबद सलाहिए अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न हो विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राती काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जिंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुरु बूझ न पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला सरम करम दो नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाम फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए तन लगे

गया जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाहो मूर्ख पंडित नाव अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा कै सिकदारा एना पर्याना।

सदा सुख होए महला पहला अजर जरे तानो कुल बंद पूजे प्राण होवे फिर कंद कहां से आया कहां यो जान जीवत मर्त रहे परवान हुक्मे बूझे तक पछाने यो प्रसाद गुरु ते जाने होंदा सरी अज्ञानिक जान ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी पढ़िए नाम सलाहा होर बुद्धि मिथ्या बिन सके व्यापार जन्म बिरथिया अंत न पारा।

रास आप छुटे न छूटी है, नानक बचन दिनास महला पहला। मास मास कर मूर्ख चगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। गेंदा मार होम जग किए, देवतियाँ की बाने। मास छोड़ बैस नक पकड़े, राती मांस खाने। हर कर लो कानो दिखलावे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे। नानक अंदेशों क्या कही है, कहे ना कहे बूझे। अंधा सोए जे अंध कमावे, तिस हृदय से लोचन नाही। मात पिता की रक्त निपन्ने, मच्छी मांस न खाही।

तू है मन भाया फाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पलहाड़ अंदिन पक्षी फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म

उलुप कमल अमृत भरिया यो मन कथो न जाए अजप्पा जाप ना विसरे आप जुगाद समाए सब सखिया पंचे मिले गुरमुख निज करवास सबद खोज एवं कर लह।

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाई सुध।

कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जा चैदा।

तारंग राव सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत

गई हा पियो कहो रविदास पयो जल देखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो राग का नड़ा चौक दे महला।

मिल हरिया हों बल बल बल बल सात जना को मिल संगत पार उतरिया रहा हर हर कृपा करो प्रभ अपनी हम सात जना पग परिया तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पत उधरिया मनुआ चले चले बहु बहु विद मिल साधु वत वत करिया ज्यों जल तंत पसारियो बगत ग्रह

खिल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फांस। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध रख

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंधप हर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम बहु।

राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काट लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जपियो अकथ कत्कात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा राखो जन साथ। कानड़ा महला चौथा पड़ताल, कर पंजवा इको अंकार। सतगुर प्रसाद मन जापो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल। हर गुरुमुख काटक साल।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो पाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुरु सतगुरा सुख होत हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुमके

पहला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु संत जना खोल खोल कपा

काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाव कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर ध्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पै दयाल सहु नानक कौ छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो

अनेक स्वांग काछे पेख तारी जैसो सा तैसो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार कानड़ा महला पंजवा तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिख नामायो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ जल तरना, अभय दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। कानड़ा महला पन्यवा, साध सरन चरण चित लाया।

सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरन।

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार।

नागर उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर का।

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन

ऊंच नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत ऐसो जन बिरलो है।

कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमते, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनेक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरणाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधारे रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पै कृपाला, मगन पै हिय रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, पूरे काज बुरु कै फेरो रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो, कहु नानक एक कै पारो सो, बंधन काटन हार गुर मेरो, कानड़ा महला पंजवा, विखे दल संतन तुमरे गायो, तुमरी टेक परोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ, जन्म जन्म के महापराचत, दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा, सह समाद समायो, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक ले लायो, कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप तीर

था पूजा जे हर पावास। माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास। प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभ।

जगत उदाहरण नाम पे तेरे, नवनिद नाम निदान हर के रे, हर रंग रंग रंग अनूपे रे, काहे रे मन मोहे मगने रे, नैनो देख साध दरते रे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किस संग न चाले।

मान मोह त्याग छोड़ो तव नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकाप राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मन मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले। कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई। कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो, ज्यों ज्यों जपै

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो, जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यों लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी लग

सतगुरु बचन बचन है सतगुर फादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुरु।

सब एक समाए समावे गो। एको रूप एको बहुरंगी सब एकत बचन चलावे गो। गुरुमुख एको एक पछाता गुरुमुख होए लखावे गो। गुरुमुख जाए मिले निज महली।

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो, माया पुयंग तिस नीड नावे, दिख चार चार लिव लावे गो, स्वान लोभ नगर में सबला, गुरखिन में मार कडावे गो, सत संतोख तर्म आन राखे। हर नगर

गो। ज्यों गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावे गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावे गो। ज्यो अमृत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावे गो। सतगुर शरण शरण मन पाई।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सत्संग पाये हर त्याय, बहुर दुख ना ला गए कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन बिनवंत नानक।

नित पजो स्वामी अंतर जामी सफल जन्म सवाया गोविंद गाये नित ध्याये परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौमे ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरतदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है गुरमती हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम। महला चौथा। हर हर नाम पवित्र।

अंतर भरपूर है करते सब तेरी बनत बनावनी, रंग परंग शिष्ट सब साजी, बहु बहुविध पाक उपावनी, सब तेरी जोत ज्योति विश्वरते गुरमति सुदै लावनी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उद्धार, विच संगत हर प्रभु वर्तदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिखो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न ना चेत्यो, तिन जुए जन्म सबहार, गुर तुठे हर चेताया, हर नामा हर उद्धार, जन नानक के मुख उजले सच्चे दरबार। महला चौथा, हर कीरत उत्तम नाम है, विच कल जुग करनी सार, मत गुरु मत कीरत पाई है, हर नामा हर उरहार, वड पागी जिन हर त्याया, तिन सौंपया हर पंडार, बिन नामे जे कर्म कमावणे, नित हो मैं होए खुआर, जल हस्ती मलना वाली है, फिर भी फिर पावे चार, हर मेलो सतगुरु दया कर, मन वसे एकंकार, जिन गुरमुख सुन हर मन्या, जन नानक तिन जयकार, पौड़ी राम नाम।

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सबदी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किछ वखर होए सो वर्णिय तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जिस

अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए, हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए, हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए, हर दरगे जन

चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत गति मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया। तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे। हर लाहा हर भगत ने सेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत। कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग। गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विटो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा गै लीता, दुख दालद सब बोले गया जानाओ गुरु हर दीता। सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत उपाय सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हों मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने, नानक सो प्रभ मैं मिले।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार प्रत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस सस्या हर जन हर हर हर लिव लाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बकीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया कल्याण महला चौथा।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन से, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभु लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभु स्वामी, जन हर हर नाम पजतई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नथई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विडान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को अनंद भया है, रिद सुध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने। कल्याण महला चौथा, प्रभु की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हों तुमरी करो नित आस प्रभु। मुहि कब गल्लावेंगे रहाओ, हम बारिक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगार जगत।

सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

सिद्ध मुन इंदिरा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क त्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कह।

कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाये, साधु चरण गहो, कल्याण महला पंजवा, प्राण पथ दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे।

नेचर सच शब्द निशान रहाओ हर दिन आन ना कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्व कटा के दाते स्वामी देसो पैरन खान सुरत मत चतुराई सोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुबद दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो।

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिल दी जय। राम नाम तुल और

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुरु पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालिक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन

जन हर भगवान दिखी जाए, साकत सूत बहु गुरु जी भरिया, क्यों कर तान तनी जाए, संत सूत किस निकते नाही, साकत संग न की जाए, सतगुरु साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दी जय बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अब उत्तम।

किन जल बिन फूट मरी जाए। माँ अपाग अपाग है जिनके, तिन साधु तूर न पी जाए। तिना सिसना जलत जलत नहीं बूझे, दंड धर्म राय का दी जाए। सब तीर्थ बरत जग पुन किए, हिवे गाल गाल तन छीजे। अकुल्ला तोल राम नाम है गुरमत, को पुजे ना तोल तुली जाए। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म।

मन तन अर्थ करो सब आ गए, रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा। ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर, नित चुन चुन पूज करी जय। आत्म देव देव है आत्म, रस लागे पूज करी जय। विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

मन मोती साल है गुरसबदी जित हीरा परख नहीं जाय संगत संत संग लगूचे जो पीप पलास खाए ली जाय सब नर में प्राणी उत्तम होवे राम नामे बास बसी जाय निर्मल निर्मल कर्म बहुकीने नित साखा हरी जड़ी जाय कर्म फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बात।

तिन पस पस नाच वडी जै साखत नर अंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवी जै जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण परी जै नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जै कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जै किल विखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत परसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरपुरा कार्ड कटी जाए।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्व ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढ़े अमृत पी जय। साकत स्वान

साधु साधु शरण मिल संगत जित हर अस्पार कदी जाए पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर दी जाए तू अगन दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जाए सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करी जाए कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जाए जब लग सास हुए मन अंतर साधु तूर कवि जय रहाओ शंकर नारद शेख नाग मुन तूर साधु की लोची जय पवन पवन पवित हो है सब जय साधु चरण धरी जय तज लाज अहंकार सब तजिए मिल साधु संग रही जय कर्म राय की कान चुकावे दिख दुबदा कार्ड कटी जाए परम सुके बहु उबसुक कही है मिल साधु संग हरी जाए आते बिलम

सुख नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवी जाए जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जाए सब माया मोह बिकम जग तरिए सहजे हर रस पी जाए माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तची जाए अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार पार लग ली जाए नानक राम राम राम राम राम रामे ते गत की जाए सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जाए छक्का पहला

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब होना होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ नाओ तेरा तान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत परवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाहा नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बांधी जमपुर जाए नारी देरी कर बरदेस मन किया खुशिया की चैवेस जा सदे ता टिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो हो जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय कोय त्यो संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नास्त करनहार अपार रहाओ पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू और पला सहसार जित तन नाम न उपजे से तन होए कुवार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्मे उचरे संकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध तय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए करिए साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा जे को एक करे चंग्याई मन चित बहुत बसावे एते गुण एतिया चंग्याईया देना पछोतावे तुद सलाहन ते

नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। करवाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जाके कर्म नाही धर्म नाही नाही सुतमाला शिव ज्योत कन्नो बुध पाई सतगुरु रखवाला। जाके बर्त नाही नेम नाही नाही बकबाई

चित सुरत समझाई संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला कांका कहया दर परवान दिख अमृत दो समकर जान क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त है।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्टपद तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान तीर्थ नहीं कोए सर संतोष।

पूरा नावण पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जासी वास बनास पत कौर है पास चरण लिव रही है गुरुमुख जी प्राण उपजे गुरुमुख शिव कर जाइए गुरुमुख नानक सच समाई है गुरुमुख निज पद पाई है प्रभासी मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगाश्या पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो तै तै मांगो देह अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिस विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान क्षमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए।

माता को समझावन जाइए जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई, नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता, परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास। जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास, ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, कट कट एक वखाणी है कहू न देखिया जाए। फोटो पूठो रालिए बिन नावे पट जाए, जा तू मेले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए। जन्म मरम दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे तंदा। आसा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ। कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर

और न पावे जब लग दू जी राई एन जिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के सबदे दर निशाने कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने मैं लो उजल सच कोए उत्तम आख ना ऊंचा होए मनमुख खूल महा बिखाए गुरमुख होए सोरा चैनाए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे किसको जयकार तू बक्से जात पत होए नानक कहे कहावे सोए हरवाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया दिबल चाग सहज परगासिया रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम गरबा दे मारिए छूटसा चैनाए जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुखमूल गवाया दरगे मिले सजाए जग खोटो सच निर्मलो गुरु शब्दी विचार ते नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार अजर जड़े नीजर चढ़े हमर अनंत स्वरूप नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई रहस रंग सुरमाइस पाई पैनन खाना चीत न पाई सात सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किचना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा कीरत कर्म कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा।

कुमारी त्रिपुत तरंग तट बिचारी अकथो कथो क्या मैं जोर तगत करी कराहे मोर अंतर वसे चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रंजन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विधि जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बिगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदुस मन सामन मारी गुर प्रसाद प्रभु पाया अत रस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रब रहा प्रभु सोई करवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

मन मुख विच्छेद दुख पाए, सबज मिले से सूचा चारी, साची दरगे माने हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराशित काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहां करे बपुरा जन बरते, गुरुमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरुमुख आवे साध मना, रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरुमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साथ शब्द मन मानिया, राग करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरुमुख विरला कोई बूझे, सब दे रहा समाई, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अभाई रहा, हम दिन पवित करो दिन राती, इस युग का लोहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुरु दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बसले स्वामी, आपे लेहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे देहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुर ते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाने पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर कृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड़ अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई रहाओ, गुरमुख सालान से साध पाएन।

पंचना हृदय प्रगटिया, जो गुर शरणाई पद पया, इंद्री पंच पंचे वस आने, खिमा संतोष गुरमत पावे, सो तन तन हर जन वड पूरा, जो कह बैराग हर गुण गावे, गुर ते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित धरे, कर आचार बहु संतोषं चे, जो किछ करे सो नरक पड़े, एको शब्द एको प्रभु वर्ते, सब एक से उत्पत्तल है, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रले, करवाची महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सालाए, पूरा पाग हो गए मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाए रहाओ, अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विरला ले, जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माए वसाए, दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे फाचा ले मिलाए, गुर की बाणी सो लाए प्यार, एथे ओथे एव आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा ननाए अपना भाणा, सोई तगत सुगड़ सो जाना, नानक तिसके सब कुर्बाना, प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद, रसक रसक गुण गावे गुरमत, लिव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम रिद अंतर भायो, गुर मंत्र दियो हर कान रहाओ, आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम बखान, कित विद क्यों पाये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वस्या, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे पाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक को गुर कृपा भारी, हर नाम दियो खिन गान, अरवाती महला चौथा, उगवे सूर गुर मुखर बोले, सब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर जवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा, गुर पद कारे हम बाल रहाओ, साकत को दिन रैन अंधारी, मोय फाते माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, रिन बादे बहु विदबाल, सत्संगत मिल मत बुद पाई, हों छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर की ये शब्द निहाल, हम बारिक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल, दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ, गुरु नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा, एक खिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रसक रसीक, गावत सुनत गौ कहे मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक, मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिना मस्तक उजल टीक, हर जन शोभा सब जग ऊपर, ज्यों विच उडवा सस टीक, जिन हर हृदय नाम न वस्यो, तिन सब कारज फीक, जैसे सिगार करे दे मानुख, नाम बिना नकटे नकीक, कट कट रुनैया रमत राम राए, सब वर्ते सब मैं एक, जन नानक को हर कृपा धारी, गुर बचन ते आयो करी नीक, प्रभाती

महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने तेसा कुत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडपा सतगुर बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभ कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखा हर हर दान दियो गुर पूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप सोबा गुरमुख करपा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा प्रभाती मैला चौथा गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर धाबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रसपिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हों मैं बिख्या नित लोग लुवाने उत्कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा सत्ता पहला प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ न जान सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान छिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा तरत बर्तन को पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोगते रहे निरारा का तू पावे प्राण पते रहाओ काचड़ पोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटंग सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत कहां सखाई जय कोई न होवे कोट अपराध इक छिन में धोवे बात करे नहीं पछोतावे एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे
किरत संजोगी पाया पाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार, करवाती महला कन्या, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार, तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस लाया सोई जाने, देख देख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जाके हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई नेचल आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा, करवाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहि निस्तारे, राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए, बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हवारिया, महामुक्ते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकट तवानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव, करवाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया, हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल, राव पाप पाप बिन से किन भीतर, तय कृपाल गुसाई, सास सास पार गम आरादी, अपने सतगुर के बल जाई, अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत ना पाये, लाहा खाट होइए तनवंता, अपना प्रभु ध्याइए, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया, करवाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सगना से, सच नाम गुरदी नीरा से, प्रभ की दरगे शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते, हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे,

कलेश जो तिस पावे सो फल होश तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाए वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निगदाय, कहो नानक वड पागी पाय। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत्सा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाई।

गुरपुरा पाइये वडबागी, दर्शन को जाइये पुरबान रहाओ। किलगित में ते शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आ प्रगास, चरण कमल मन माए निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभु पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला दास, जल तल मैयल पेखे परपूर, नानक उदरस तिस जन की दूर, प्रभाती मैला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

जीवन मुक्त जा सबद सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मलकदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर

पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किस वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन ए रचना रचिए हर अभिमान न जाए जियो अभिमानी पै पचिए फुलन विच किया सब कोई करता आप न

अंतर झूठा क्यों सुठ होए, सब दी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

समाय एक सिरकार से सतगुरु दिए मुक्त आना हर पद चीन पहे परदाना मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई प्रभ निवाजे किन कीमत पाई कहो नानक गुरु बूझ बुझाई नाम बिना गत किने न पाई प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श ले गुरु पूरे सच्ची बनत बनाई हर रंग राते सदा रंग साचा दुख विसरे पत पाई सूठी गुरमत की चतुराई दिन सत बार ना लागे काई रहाओ मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई मन मुख ते अब पगत ना होवस हो मैं पचे दीवाने इव मनु आखिन ऊब प्याली जब लग शब्द ना जाने ऊख प्यासा जग पया तिपत नहीं बिन सतगुर पाए सहज सहज मिले सुख पाये दरगे पैदा जाए दरगे दाना बिना एक आपे निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस आपे बूझे पद निर्माणी जल तरंग अग्नि पवने फूल।

परख खजा में पाया जात वर्ण से सह अपीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में नैल चुकाया नानक तुम के चरण पखाले

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार।

सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदिया इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग अनंत स्यों जुगता उर्ज पर्यो मन

आए तू ठाकुर यो गृह सब तेरा कहो नानक गुर किया निबेरा प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध

अंतर कपट सुरे बेताला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया कुंवर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया गे के नस्ता देश छोड़ पर देश ढाया पंच चंडाल ना ले ले आया कान पर आए हिराए तू का कर कर मांगे तृप्तावन से तू का बनता छोड़ बड़ नजर पर नारी वेश ना पाये महा दुखियारी बोले ना ही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अंते रहता दुख देही सहता हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मन मुख कर्म करे अजाई जो बालू कर ठौरना ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवे पाग का दर्शन पाईए आप तरह सब कुटुंब तराईए रहाओ दूजा प्रभाती महला पन्नीवा सिमरत नाम तिलक सब काते धर्म राय के कागर पाते साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माए समाया राम रमत हर हर सुख पाया।

गांडा। जब तब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप।

मात पिता हर प्रीतम नेरा, मीठा जन भरवासा तेरा, कर गय लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास। विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया।

रिव अंतर कर तल काती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निस्वादं रहाओ। नित पट स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं। हृदय चुरी संध्यानी, पर गर्भ हिरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं, निस्जागस पगत परवेशं। पग नाचस चित अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला। हृदय कूर कंठ रुद्राथं, रे लंपट कृष्ण अवाथं। जिन आत्म तत् न चीनिया, सब फोकट धर्म अवीनिया। कहो बेणी गुरुमुख त्यावै, बिन सतगुरु बाप न पावै।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिन सत नह लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

आत है। जय जावंती मैला नामा। रे मन कौन गत होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

बनता विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जय सो परसन माधवे निर्तमोहं अलप बुद्धन रचंत बनता विनोद साहन जो बन बेहतर कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभन।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडन ऋद बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता।

नच दुर्लभं स्वर्ग राजनी नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अम्बरे

अजाभोदंत कंद मूलं बसंते समीप कुल हरे तत्र गते संसारिणानक सोग हर्षं व्या

श्याल खरे विखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय भर।

परम बादम अवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान धृग जन मने।

करे न चित्तो, जाका अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग कितो। अपजसं मिटंत सत पुत्र सिमर तवर।

मिथ काटत अनूप मरम न जानिए, गाहक दुनी अपार सुतत पठानिए। इस

जाए। जप तप संयम हरक सुख मान महत अर गर्बे, मूसन निमख के प्रेम पर वार वार देव सरबे। मूसन

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की अवरे आस निराश नरक परे।

अब करता सोए काल पाछे कछु न होए बात जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाख दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना।

परे हर सिमरी है ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरे बित कबीर सेवा को दोए भले

कवि केवल काची धात साबत रखे ता राम भजे नहीं ता बिन की बात। कबीर केसो कुकिया ना सोए सारे रात।

कबीर राम रतन मुख खोली, तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती, ले दो महंगे मोल कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाले कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बम्ब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए।

जीवन के पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि हूँ ते आदे,

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुह साध तिरंगी ताके से खेले काठी सरसों।

फरीदा खाक ना मिलती है खाकू जेब न कोए जींदियां पैरां तले मोया उपर होए फरीदा जा लबता ने हो क्या लबता कूड़ा नहीं हो किचर छत लंगाई है।

खल डूंगर पवेम अज करी दे कूजड़ा सै को माथी ओम राती वड्डिया सुख उठन पास सिज दिना दा जीरिया दिना विदानी आस फरीदा जे में होंदा वारिया नित्ता आयड़िया खेड़ा

कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

पछुताओ वत कुआरी ना पिए कलर केरी छपड़ी आए उलते हंज सिंजू बोलन ना पीवे उड़न संधी डंज हंस उदर कोदरे पया लोक विदारन जाए जहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कल फरीदा इत सिराने तोए सन कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई नाही फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहान इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडाए देही रोग न लगई पल्ले सब कुछ पाए फरीदा पंख परा होनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज फरीदा रात पूरी वंडी है सुतियां मिले न पाओ।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंत न लाग। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले कई पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी रहन ना पाए तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वैन सिदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर रात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे के बेड़े नो कप

मकनी वहन जो जो बन जाए दीहड़ा तो उम्र हथ पवन खरीदा तन सुखा पिंजर किया तलिया खूंडे काज अजय सुरद न बहुड़ो देख बंदे के पाज काजा तरंग तंडोलिया सगला खाया मास एदे लेना मत हो फिर देखन की आस काजा चूड़ ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न पिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कार्य

अमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मौतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर देवे करवा।

सामने जिना विसारे नाओ ऐसे दुख कनेरिया अगे थोर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरे ओए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा ने मुहताज अल्ले खेती रतिया एहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए।

क्या चल नाले इक जा बंदे नाल हैं इक ना सुतिया दे उठाल तू देंदिये सुहाग को तो तन काई कोरे जिन्ना नाओ सुहागनी तिन्ना चाक न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर परे, जे किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी हे परे फाही वाल पचास, तन लहरी गद किया सत्ते तेरी आस। कम को अखर कम गुण कम को मणिया मंते, कम को वे सोह करी जित वस आवे कंते। निमन को अखर खवन गुण जो बा मणिया मंते, के त्रै तैने वेश कर ता वस आवी कंते। मत होंगी हे आना ताण होंदे हे निताना, अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। एक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तई, ह्याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन।

सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे। व्यापत देखे जगत जाने कौन तेरी गते।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है। हाके बल बल बल बल।

सूत है जहानी कवन उपना उपमा देओ बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो देओ अलक अपार देओ अकल कला है सब सर्व को धान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सर।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जरने जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरखे पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए जे ठाकुर सो परसन भयो सतसंगत तै प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कुन कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो सचे सत निवास सच तपावस करयो सच सुन जो सन

हर कारण करम समर्थ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगला होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक काट भरम भरे। रे मनमूस बिला में गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत भुगना। सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुभना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना। देहे न देहे

सदा सदा बलहारी। आवन कत्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंधयो न जात विधे मन दर्श मग, पावक जरो न जात रहो जन धूर लग, नील न साकस बोर चले हर पंथ मगे, नानक रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग, उदम कर लागे बौ भाती बिचरे अन सास बौ खटुआ, भस्म लगाए तीरथ बौ भ्रमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावते, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात खाते कर खटुआ, सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख दयावर दाता संत सहार सदा दिखयाता,

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिथ जस गायो, कब कल सुजस नाम।

जाति दृष्ट अमृत धार काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागीले गुर बिचारे निमरे भूत सदीव परम प्यारे कौटीरत कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुरु पर समुरारे तै तो दरियो नाम अपारे बिमल जास बिठारे साधक सिद्ध

मन हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जानी अकलगत गुरु परवानी जाति दृष्टि।

लैणा जगत गुरु पर सुमुरार, दृष्ट भरत तम हरन दहन अघ पाप परासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोह करण शरण जाचिक प्रित पालन, आत्मरत संग्रहण कहन अमर।

गरल नास कन नठे अम्यो अंतरगत पियो रिद बिगास जागेओ अलग पल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख

कोई पुरुष वर्षाचा जाता एक नाम असल संसारे जिन भगत भव जल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान एक नाम रसिक।

तीरथ रव फिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम।

जखन सती सर मनवसया सोई नाम सिमर गंगे तामे चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते भावतार अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखे अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर बुछे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरन गुर अमरदास तें पायो नाम धुयावे देव कैपीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

सुख पायो अमर गुर की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए ग

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखो भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो। मस्तक निशान सचो करम पल जोड़ कर ध्यायो। परसो गुर सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो। चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल लै। हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे। जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे।

परवनी गुर अमरे सुने जैन सत्यत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते।

से नर उठत बिथते सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सकते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर समझे तय पढ़ो एक मन धर्यो एक कर एक।

गुरु अमर रास निज भगत है, देख दर्श पावो मुकते। गुरु अमर दास

एक बंधु गण जो को रहे जासमंत मानो लहे जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद

तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मन

जात तप सत संतोष तिक दर्शन गुर सिख सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत भाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुरु गौहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल निमल अवतरे गुण कर तारे उचरे गुरु अमरदास जिन सवे तिन दुख दरिद्रे।

क्रोधवश करे पवन उदंत न धावे। निरंकार के वसे देश हुकुम बोझ विचार पावे। कल माए रू

ਕਾਦਮੋ ਤੇਰੇ ਦਿੱਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ ਮੁਖੋਂ ਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ ਦਰਸ

धर्म धन कर गयो भगत सिंह सर लड़यो धन बोहर अटल मन सबद गुरु ने जाग दियो काम क्रोध लोभ मोह।

ਅਬਲਾ ਸੇ ਅਬਗਤ ਗਿਆਇਓ। ਇਸ ਭੂਤੇ ਦਾਰ ਦਰ ਨਾ ਚਮਤੇ ਕਲ ਸਹਾਰਤਾ।

नाम रे निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे। कब कल ठकर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवा अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कल कल ठकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुड़।

निरञ्जन खरेलह। सतगुरु दयाल हर नाम दृढ़ाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सा।

पद गुरु प्रसाद परम पद पाया भगत भाए भंडार भरे। मैं तेरा जन्म मंत्र मरण भव भगत लागा संतोष करे। कब कल ठकुर हरदास करे गुरु रामदास सर अवर भरे। अवर भरे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन कर

भरत परवासी सुपुबली नहते सतगुर शब्द अथाओ अमिनो धारा रसगुत्ते मत माता संत।

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृढ़ जन दुख पाप कौ कट होए जियो। तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे।

पारे गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुण नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को

साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लेव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल तो पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुवास जास सिमरत अंतरे जाके देखत द्वारे काम को दे

पांव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकड़ खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृदय में धरे सो जन्म मरण दोते रहे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे, गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार।

हरण समृत कलयुग सुनत समाद शब्द जिस केरे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तैने रे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत

निस्बा सुने एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भांडरो। भनदास तो आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियों जौतो सब सुख इत उत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाये सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर सं

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

जग जन्म मरण भगाए आई ही प्रतीत, प्रतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च भई। कज माया मोलो अर लालचे काम क्रोध की दिखा गई। अवलोका ब्रह्म भरम शुभ छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका। दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अल

सच जान मंत्र एह नित बातुरह कल्याण लहे परम गत दियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सों तार धो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तज निकार मन

पाता गुरमुख संगत सवे विचारो वाओ वाओ का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत

सतसंगत सेठी मन खचना, किया खेल बड़मेर समासा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत

गुर समरथ गए करिया धूव बुद्ध समत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल ने भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है धर्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उधार।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधास, पर पूरन सब त्रंग प्रगट तिन आगर।

ध्यान धरे फिर सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

अंतर्गत तेज पुंछे लोक प्रगा से देखत दर्श भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा।

सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

सुदामा खूब भगत हर के जोगन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगत पर।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जैसे तुग सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निद पावे। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभ पाइए तो सतगुर सिमरो नरो। जिन

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, तीनी भगत प्रेम निवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद की

तै जन्म ते गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार।

वेदन भर सहता भय बंधन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सोदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारसे परसे परस परस

आए बौरस साल में सवार दी खटवस मीठे पाए क्यों बाणी पगत सलां दे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए पै पगती पगत बहु लोच दे।

0: नाम रतन प्रगाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्के सिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुक रही रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुभाए। नानक भक्ति रतिया हर हर नाम समाए, मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय के।

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आए नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करे विसास ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास हर ज्ञानिया की रखदा।

आए बिख का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं गया।

सतगुरु पुरख निर्वैर है, नित हिरदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा, अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है, अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे, बिखा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे, फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नामे जम पुर जाए, नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताए, चिंता तावत रह गए ता मन पया।

जन की टेक हर नाम हर बिन नाम है ठवर न ठाओ। गुरमती नाव मन वसै सहजे सहज समाओ। वडपागी नाम ते आया एह निसलागा पाओ। जन नानक मंगै तूर तिन हों सतगुरु बाणे जाओ। लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार। ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांती वार। बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार। वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार। असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार। हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार। हर जियो लेखे वार ना आवे तू बख्श मिलावन हार। गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार। जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार। विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए। जन्म मरण ने चल भये गुरमुख नाम ते आए। गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन। नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन। मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास। जिसदा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास। ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास। मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास। गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास। हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास। सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास। नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास। शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई। पेख तरह बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई। नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचै कोई। हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई। अपड़ कोई न सकई जेसो लोचै कोई। मुख संजम हच्छा ना होवई कर पेख पवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै गुर शब्द विचारे कोई। नानक शब्द मरे मन मान।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्स पा जा गया सिर डंड लगा भोपार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दयानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहणे सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वक्त अनेक है नव निर्नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगह पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहार रह जाओ। से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मोह सोहणे सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगह बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुरु सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुरु मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण।

बोलिया तेरा थाए पवै गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चवाए जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले उठा छह बरलाए चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए तुरु खसम पेजिया सच्चे हुकम पठाए इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पै का सह सिंगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाई है चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चैरदास नानक कट कट एको वरतदा शब्द करे प्रगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरियावल होए सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठे मन तन परफड़े सब जग हरिया होए वडड़े चाल चलुंबड़े नावड़ा लिये किस नाव लिये परमेश्वर पन्नन करण समरथ हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान आप छोड़े ता सो मिले सच्चा यो विचार हो मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईदा अंदिन सदा विहान बिन सतगुर किने न पाया कर सके विचार नदर करें जे आपनी ता आपे लहें सवार नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना महले वेश नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवे बेद पड़े जुग चार नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित मन मुख सो कर दोस्ती सुख के पुछे मित गुरमुख सो कर दोस्ती सतगुर सो लाए चित जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित पुलिया आप समझाए सी।

बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसी है, जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे, जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रह आनंद नानक सह समाई है, सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है, जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया, जिनको प्रेम प्यार सौ आप पहलाया, कर्म कर नानक लेहो मिलाए, मैं जाचक दीजे नाम हर, गुरमुख हस है गुरमुख रोवे, जे गुरमुख करे साई भगत होवे, गुरमुख होवे सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तिस सच्चे दरबार, तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे, जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़े, जे मेले सृजनहार, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिस आपनी तिस लाए हेत प्यार, सतगुर की सेवे लगिया पौजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार, मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, कुट कलत कुटंब है माया मोह वधाए, दरगे लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छाए, बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए, नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए, गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए, हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए, नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे ले मिलाए, मन मुख हुक्म ना बुझे बपुड़ी नित हो मैं कर्म कमाए, वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए, अंतरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए, गुरमुख प्रतीत पाई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए, अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए, हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए, नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए, जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल, जिना इक मन इक चित ध्याया सतगुर सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हौ मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए, गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए, मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार, दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार, नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगह होए खुआर, सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए, रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए, सब किस किस्से होया ज्यों तिसे धीर जाए, सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए, गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए, हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुर जिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए, अंदर तिसना अग है मन मुख पुख न जाए, मोह कुटंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए, अंदिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरण न चुकई हो मैं कर्म कमाए, गुर सरनाई उबरे नानक ले छड़ाए, सतगुर पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुर भाए, सतसंगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मिलाए,
यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम तराए गुर सिखी पाना मन्या गुर पूरा पार लंघाए गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुर सिखा नो सावास है हर तुखा मेल मिलाए गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग देखाया हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमति जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वर्त करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

गुर के शब्द अरा दिए नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू यह राग जामू इक ता लख तो जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिनकी तो सो विसरे थोरठ थोर पीजिए कबू न फीका हुए नानक राम नाम गुण गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवें कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी जलन को मंत्रिया।